0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: गप्पा वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Good morning. Namaste. सुबह के 5:04 हो चुके हैं और प्यारा सा दिन आ चुका है, 4 अगस्त का मंगलवार 2026। क्या बात है, बहुत ही प्यारा दिन शुरुआत हुई है प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की सुबह हमारे लिए थोड़ी सी अलग है क्योंकि थोड़ी सी खास बन जाती है, क्योंकि आज के ही दिन 4 अगस्त को हुआ था जन्म एक प्यारी सी ऐसी आवाज़ का जिसने कई पीढ़ियों को गुनगुनाना सिखाया। जी, हम बात करें किशोर कुमार जी की। खांडवा की गलियों से निकलकर बॉलीवुड के सबसे बेमिसाल आवाज़ बनने तक किशोर दा का सफ़र खुद एक कहानी है। कभी उनकी आवाज़ में मस्ती थी, कभी दर्द, कभी शरारत, और हर बार वो सीधा दिल तक पहुंचती थी। गाने ही नहीं, अभिनय, कॉमेडी, सब कुछ उन्होंने इतनी आसानी से किया जिससे हमारा मॉर्निंग तो बनता है। हमारे पुराने जो लोग थे जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ उनके देखी, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो आज का दिन हम मॉर्निंग उनको समर्पित करते हैं, हमारा सलाम उनको देते हैं। आज वो भले वो हमारी ज़िंदगी में या आज इस धरती पर नहीं है, पर उनकी आवाज़ आज भी हमारे साथ है। सुबह से लेकर रात तक हम उनके गाने सुनते हैं, तो इन्जॉय करते हैं उन्हीं के गाने। स्पेशल उनका जो ब्रदर रहे अनूप कुमार अशोक।

0: कुमार और खुद किशोरदा।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
3: Baju.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों. टाइम ऐसे निकलता है जैसे भागता है. और मुझे पता है आप लोगों की भी भाग दौड़ स्टार्ट हो गई होगी. सब ने ऑफिस जाना है और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आजकल भाई सावन का महीना शुरू हो चुका है तो थोड़ा सा पूजा पाठ भक्ति में भी जुड़ चुके हैं. और कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि

0: थी आज कहाँ गायब होगी, पर आज सच में ठंडा मौसम थोड़ा सा बाहर है। और कहते हैं ना कि जब बाहर बारिश भी हो और ठंडा मौसम हो तो ऐसा मौसम ऐसा बन जाता है थोड़ा सा रोमांटिक, और कुछ लोग कहते हैं कि लेजी बन जाता है। आप किस टीम में हैं मुझे भी बताइए 5499124 पर। अगर आपको भी कोई डेडिकेशन देना है या किसी स्पेशल के लिए कोई मैसेज है तो मुझे बता सकते हैं 5499124 आप ही का नंबर। हम हैं आपके साथ 24 आवर्स। इंजॉय कीजिए, किशोर दाल चाहे लता जी हो, मुकेश जी, मन्ना दे, सभी के गाने हम चलाएंगे। पर आपको बस करना एक ही काम है जो मैं आपको रोज बोलती हूँ, मुस्कुराना है। सबसे पहले मुस्कुराते हुए बढ़ते रहिए आगे, पूरा दिन अच्छा जाएगा।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 5:29 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी जाते हैं काम पर, कई जगह चाहे वो शेफ्स हों या बहुत सारे लोग अपने गार्डनिंग के लिए जाते हैं, पानी देने जाते हैं और कई लोग बस अपने सुबह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए छोटे छोटे काम करते हैं या पर वो अपनी नज़र में उनके लिए बहुत बड़े बड़े काम हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो बस बहुत छोटा है, तो अगर आपको लगता है कि आप कोई छोटे से काम के लिए बहुत जल्दी उठ रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा। जो भी जल्दी उठता है कहते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो बहुत अच्छे से राइज करता है, इसलिए तो हमारे प्रोग्राम का नाम भी है राइज एंड शाइन। तो राइज जल्दी उठिए और शाइन कीजिए क्योंकि ये टाइम है सिर्फ आपका। इस समय हम जुड़े हुए हैं ये प्रोग्राम के साथ, पर इस समय आज हम बना रहे हैं किशोरदा का बर्थडे का एक सेगमेंट जहाँ पर हम किशोरदा के भी गाने चलाएंगे और बाकी भी हमारे जो सारे सिंगर्स हैं जो कि लेजेंड्स रहे हैं, चाहे किशोरदा हो, मोहम्मद रफ़ी साहब हो और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है इस यूनिवर्स को जो हमेशा से गूंजती रहेगी, बजती रहेगी न जाने कितने सालों जन्मों जन्मों तक। तो चलिए भाई, बहुत सारे गाने अभी इंतज़ार में हैं। अगर आप भी चाय की चुस्की ले रहे हैं, चाय बना रहे हैं तो बनाइए, मैं भी साथ में आती हूँ, मेरे लिए भी एक कप चाय बनाइए।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 5:43 हो चुके हैं. सुप्रभात सभी के लिए. हम तो बस लेकर आए हैं आपका राशिफल नए उत्साह के साथ, नई सुबह के साथ और नए मौकों का इंतजार जो आप कर रहे हैं उसमें जो प्यारी सी हलचल मची है ऊपर वाले की तरफ से. कहते हैं ना, जब इशारा होता है ग्रहों का तो फिर तो सुनना पड़ता है. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज कोई नया दरवाज़ा आपके लिए खुल सकता है. अपनी सोच को खुला रखिए, फ़ायदा मिलेगा. किसी अच्छी बात से दिन की शुरुआत हो सकती है. लकी कलर बनेगा ऑरेंज. लकी नंबर है 8.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज दिल से की गई बात असर छोड़ सकती है. घर पर हंसी और अपनापन बना रहेगा. अपने लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालिए. लकी कलर है ग्रीन. लकी नंबर है 2.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपकी एक मुलाकात यादगार बन सकती है. नया आइडिया आपको आगे बढ़ाएगा. अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. लकी कलर है येलो. लकी नंबर है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज मन की उलझने धीरे धीरे दूर होंगी. किसी अपने का साथ मिलेगा. किसी अपने से ताकत मिलेगी. दिन को हल्के फुल्के अंदाज से बिताइए. लकी कलर है व्हाइट. लकी नंबर है 6.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आपकी मौजूदगी सबका ध्यान खींच सकती है. कोई अधूरा काम पूरा होने की ओर बढ़ेगा. अपने फैसलों पर भरोसा रखिए. लकी कलर है रेड. लकी नंबर है 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज छोटी सी कोशिश बड़ा फर्क ला सकती है. हर काम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं. दिन आपके पक्ष में रहने वाला है. लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू. लकी नंबर है 4.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज तुम्हें नई गर्माहट महसूस होगी. किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है. मुस्कुराकर हर पल का स्वागत कीजिए. लकी कलर है पिंक. लकी नंबर है 7.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज आपकी मेहनत पर किसी की नजर जाएगी. एक अच्छा अवसर आपका इंतजार कर रहा है. हौसला बनाए रखिए, राह आसान होगी. लकी कलर है ब्राउन. लकी नंबर है 9.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: आज नई जगह या नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा. अपने दिल की सुनिए, मजा आएगा. दिन आपको एक नई प्रेरणा देगा. लकी कलर है पर्पल. लकी नंबर है 3.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज आपका धैर्य सबसे बड़ी ताकत बनेगा. काम में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखिए. लकी कलर है ग्रे. लकी नंबर है 10.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज कुछ अलग करने का मन बनेगा. आपकी सोच लोगों को प्रभावित करेगी. नए मौकों को खुलकर अपनाइए. लकी कलर है ब्लू. लकी नंबर है 11.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: आज छोटी छोटी खुशियां दिल जीत लेंगी. अपनों के साथ बिताया समय यादगार रहेगा. मन में नई ताजगी महसूस होगी. लकी कलर है पीच. लकी नंबर है 12. दोस्तों, ये सुबह एक नया पन्ना लेकर आई है. उस पर लिखना

0: आपको है, तो बस मुस्कुराते रहिए, सोचिए कि आज आपको क्या क्या करना है। एक पेपर पे नोट डाउन कीजिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। एंजॉय कीजिए ये गाना आप सबके लिए।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
2: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2,
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:52 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए थे अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। अभी आपने सुना ढूंढे तुझको नैन दीवाने, क्या सॉन्ग था। मतलब एक फीलिंग आती है इन पुराने गानों को सुनकर और एहसास होता है क्या उन लोगों ने उस ज़माने में गाने बनाए, क्या लिरिक्स थे और क्या शब्द, क्या धुने और क्या प्यार उसमें बरसता था। तो चलिए भाई दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं क्योंकि उनमें भी तो बहुत सारा प्यार बरसता है अपनों के लिए। तो डैरन, श्वेता, रविश, प्रशाल, उवेशा, अपा फैमिली साथ दे रही हैं, राजन, सरोज, पूनम, मोनिका, पल्लवी, विशाल, उमेश, अर्शी का तो वो उनसे साथ दे रहे हैं और उनके लिए गाना चलेगा। हमारे सबसे पहले उठने वाले एक प्यारे से दोस्त हैं जिनका नाम है जयशन, उनके लिए गाना है। उन वो मांग रहे हैं टिम्बा, जेबुन, उमरियान, दानु, अंगूठिया, आकाश, श्रवण, रामदेवर एंड मेविन के लिए एक प्यारा सा गाना। आप बस हमारे पेशेंस का ख्याल रखें, हम आपका ख्याल रखेंगे। सूरज शर्मा, साजदा भी जुड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्यारी सी मॉर्निंग को। और आज एक प्यारी सी दोस्त है जिसका नाम है हविष्का, उनका बर्थडे है आज, वो 21 साल की हो रही हैं। मामा, पापा, विक्की, सुजाता, सिस्टर दिशा, दिव्यांका मैम आपको विश कर रहे हैं और हमेशा खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए। टोनी जी भी साथ दे रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है आपने सभी के लिए कि हमेशा खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए। अब्दुल, सायरा बानो जी भी साथ दे रही हैं और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज सुया बिहारी जी के लिए और कह रही है पूनम जी मैंने चाय बनाई है, आ जाओ साथ पे पी लो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और हमारे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं जो हमेशा हमें बहुत अच्छे अच्छे से मैसेजेस भेजते हैं, उन्होंने एक प्यारा सा गाना मांगा है शागिर्द मूवी का, बट हम वो चलाएंगे न्यूज़ के बाद। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद ही आप जुड़ पाएंगे समाचारों के साथ, इन्जॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और आशा भोसले की आवाज़ में।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti. Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: Time check सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार.
7: नमस्कार. रौदा पानी के रिजर्व घटते जा रहे हैं. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने फिर से अपनी वितरण योजना पर गौर किया. आते सोमवार से नए कदम लागू किए जाएंगे. पूरे देश में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल बुधवार से जलापूर्ति को 2 घंटों से कम करने का फैसला लिया गया. 10 अगस्त से नए कदम लागू किए जाएंगे. सिर्फ सब्जियों के खेतों में सिंचाई की जा सकेगी. कौ वाश स्थलों को पीने का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और उच्च दबाव वाली मशीनों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा तथा नल पानी से स्विमिंग पूल को भरने की अनुमति भी नहीं होगी. अनाबेल सवाबादी नई जूनियर पर्यटन मंत्री बनी है और तुनिया पोलो नए जूनियर स्पोर्ट्स मंत्री. कल दोनों ने स्टेट हाउस रेजी में शपथ ली. कारेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय की जूनियर मंत्री बन गई हैं. राजनीतिक स्तर पर वेरोनिका लोगोविन ने कला एवं संस्कृति जूनियर

0: मंत्री की हैसियत से इस्तीफा दिया। उनके पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के चलते उन्होंने स्टेप डाउन करने का फैसला लिया है और वेरोनिक ले गोविंद ने नूवो डेमोक्रेट पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। आज राष्ट्रसभा के एजेंडे में दो अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल की पेशकश और राष्ट्रसभा में क्रियोल मोरिसियन के इस्तेमाल करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन शामिल है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की जा रही है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका ये बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब तक ईरान के विदेश मंत्री ने वाशिंगटन के साथ बातचीत करने के दावे को झुठलाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। मस्करविंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिराएंगे, पूर्व और सेंट्रल प्लेटों में बारिश होगी, दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। आज रात घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं और लगनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में, इसी वजह से पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में न जाने की सलाह है। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:38 पर और आज शाम को 5:53 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब। शुभ दिन आप सभी को।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty. Musty. Musty. Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:10 हो चुके हैं दोस्तों और आप निकल पड़े हैं अपने अपने कामों की ओर और कई लोग इस समय आराम से रिलैक्स उठ रहे हैं, थोड़ी सी आंखें मल रहे हैं और थोड़ा सा वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं अरे भाई ये यहाँ कपड़े कहाँ रखे हैं, सॉक्स कहाँ रखी है, शूज़ कहाँ रखे हैं। घर में थोड़ा थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ी सी हलचल हो जाती है। देखिए क्या आप मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो वर्ड बोला कि दुनिया पागल है या मैं हूँ दीवाना, मतलब अगर कोई हमें पागल बोले तो कितना अजीब सा लगेगा, पर उन्होंने इतने प्यार से

थैंक यू, जो पीछे से थैंक यू बोला ना, मतलब दिल खुश हो गया। ऐसे ही अगर कोई हमें भी ऐसे मॉर्निंग मॉर्निंग कुछ कह दे तो बस आगे से इतना ही कह दो स्माइल करते हुए, थैंक यू। चलो भाई, ये थैंक यू के साथ में हम दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। आज हविष्का का बर्थडे है और उनके लिए एक प्यारा सा गाना हम चलाने वाले हैं। रवि गंगनू और दोशान गंगनू का भी आज बर्थडे है और भारती जी उन्हें विश कर रही हैं और कह रही हैं हमेशा ऐसे ही खुश रहो, जियो हज़ारों साल, साल के दिल हो 50,000, क्या बात है। मेनिका विदेशी जी का भी आज बर्थडे है, उनको भी सभी परिवार विश कर रहा है। रवीना जी साथ दे रही हैं, अमृता जी साथ दे रही हैं, किशन रघुनाथ जी सुरीनाम से साथ दे रहे हैं अपनी बिटिया दोनों जिया और रिया के साथ और अपनी वाइफ माला के साथ। जस्वी लविश आशीष सोहाती भी हमारा साथ दे रही हैं और आज एक बहुत ही प्यारे कपल का 50th वेडिंग एनिवर्सरी है और वो भी कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता, मैं क्या करूं, मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, हमेशा ऐसे ही खुश रहिए सर, हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहिए। और हमें भी बताइए कि क्या खास है, स्पेशल हस्बैंड वाइफ में ऐसी कैसी बॉन्डिंग बनती है जहां पर आप 50th एनिवर्सरी ले रहे हैं। तो हम तो कहेंगे हमेशा ऐसे एक कपल हमारे सामने आता रहे जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिले। इन्जॉय कीजिए, पर हम उन सभी के लिए जिनका बर्थडे है, जिन्होंने मैसेज किया या नहीं किया, बट हमारी पूरी एमबीसी टीम हमेशा आपके साथ है और आप सबको कहती है

अब सुबह 6:30 बजे हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। कल से पानी की सप्लाई में बदलाव, 2 घंटों के दौरान जलापूर्ति नहीं की जाएगी। देश में सूखे की स्थिति के मद्देनजर CWA को ये कदम मजबूरन उठाना पड़ रहा है। पीपीएस प्रणाली शायद फिर से स्थापित की जा सकेगी। कल प्रधानमंत्री ने वेरोनिक लुगोविन के इस्तीफे पर आधारित प्रेस के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। आज राष्ट्रसभा में वेटलैंड्स बिल को पेश किया जाएगा। इसके अलावा संसदीय कार्यों के दौरान क्रियोल मोरिसिया पर सिलेक्ट कमेटी के गठन पर भी चर्चा। और विदेश में स्पेन तथा मोरक्को की सरहद पर हजारों प्रवासियों के प्रवेश के सिलसिले में यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की आज एक आपातकालीन बैठक। नमस्कार, रादा। पानी के रिजर्व घटते जा रहे हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने फिर से

0: अपनी वितरण योजना पर गौर किया। आते सोमवार से नए कदम लागू किए जाएंगे। पूरे देश में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल बुधवार से जल आपूर्ति को 2 घंटों से कम करने का फैसला लिया गया। 10 अगस्त से नए कदम लागू किए जाएंगे। सिर्फ सब्जियों के खेतों में सिंचाई की जा सकेगी। कौवाश स्थलों को पीने का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। उच्च दबाव वाली मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और नल पानी से स्विमिंग पूल को भरने की भी अनुमति नहीं होगी। CWA के डेप्यूटी जनरल मैनेजर चंद्रासन मतादीन को सुनते हैं। कल वे ग्रांड चित्र प्रोग्राम में पत्रकार मिगन पुनापनायकन के मेहमान थे। हमने जल क्षेत्र से जुड़े सभी साझेदारों से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान हमने जलाशयों के स्तर को देखा और बारिश की दर का जायजा लिया। महुआ कुआ में पिछले साल पानी का स्तर करीब 90% था, आज वो 40% है। लानिकोलिया पिछले साल 100% भरा था और आज सिर्फ 46% पानी है। इसलिए हमें फैसला लेना पड़ा, हमें अगली तेज वर्षा तक इस रिजर्व का संचालन करना पड़ेगा, जो अक्टूबर, नवंबर और कभी दिसंबर महीनों के दौरान आती है। गए 2 सालों में गर्मी के मौसम में भारी बारिश नहीं हुई है। देश भर में पानी की सप्लाई को 2 घंटों से कम किया जाएगा, यानी सुबह 1 घंटा कम सप्लाई की जाएगी और शाम को भी। अगर एक इलाके में सुबह 6 घंटों के दौरान जलापूर्ति की जाती थी, उसे 5 घंटे कर दिए जाएंगे। उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वो एक मुश्किल हालत का सामना कर रहे हैं, फिर भी अभी के लिए वो संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं। गन्ने के किसानों के मुताबिक पिछले नवंबर महीने से कम जल आपूर्ति के चलते उत्पादन पर असर पड़ा है और इसीलिए वो लंबी अवधि के लिए सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
1: उत्तरी प्रांत के खेतों में अब सप्ताह में केवल 2 दिन ही पानी की आपूर्ति की जा रही है, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे से भी कम। ये CWA द्वारा लागू कदम है। यहाँ त्रियोले में किसान वैकल्पिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। प्लास्टिक के बड़े ड्रम पानी के भंडारण के लिए एक व्यवहारिक समाधान है, रामदेव झिंगुरी ने कहा।
2: Arroser, nous permettre médecine. Un foyer additionnel seulement, qui peut faire?
1: यहाँ लगभग 100 मीटर दूर सहाय चंद्रलाल आशावादी नजर आते हैं। सीमित जलापूर्ति के बावजूद उन्होंने अपने खेत का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। टमाटर की फसल इस वर्ष अच्छी रही है। इस सफलता का एक प्रमुख कारण ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, जो पानी की कमी के बीच सिंचाई का एक प्रभावी तरीका साबित हुई है। वहीं महेंद्रनाथ सिबालत ने भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी खेती में बदलाव कर एकल फसल की जगह अंतर फसली खेती अपनाई। नॉर्थर्न प्लेन इरिगेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी। लगातार जल की कमी के चलते किसान अब इस परियोजना का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं, खासकर भूजल संसाधनों पर शोध और उनके बेहतर उपयोग के लिए नए निवेश के साथ।

0: मॉरीशस में कम बारिश हो रही है, इसलिए जलाशयों में पानी का स्तर घटता जा रहा है। जलाशय जैसे मजबूत ढांचों के होते हुए भी आज वो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के सामने कमजोर हैं। मोहवाक्वा से लानी कोलिए, मिडलैंड्स और बागातेल डैम तक ये सारे जलाशय कोई ना कोई कहानी दर्शाते हैं। गए जमानों में सूखे की स्थितियों के चलते आज की नस्लों के लिए इनका निर्माण किया गया था। आज सिर्फ पानी को स्टॉक करना एक मसला नहीं है, बल्कि इन संसाधनों का संचालन करना एक बड़ी चुनौती है। शैलिनी अबन की रिपोर्ट पर ये विवरण। दरअसल मॉरीशस के बड़े जलाशयों का इतिहास सूखे के दौरों और बढ़ती हुई आबादी की जल जरूरतों से जुड़ा हुआ है। मोहवाक्वा जलाशय देश के पानी सप्लाई नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। इसकी पहली बुनियादी संरचना 1885 में बनी थी। दशकों के दौरान इसे कई बार बढ़ाया गया और आज भी ये मॉरीशस का सबसे बड़ा जलाशय है, जिसकी स्टोरेज क्षमता करीब 26 मिलियन वर्ग मीटर है। उत्तर के हिस्से में रानीकुलिया जलाशय है, जो 1929 में शुरू हुआ था। देश की सबसे पुरानी पानी परियोजनाओं में से ये एक है। इसकी क्षमता 5 मिलियन वर्ग मीटर से ज्यादा है और ये आज भी इस क्षेत्र के पानी सप्लाई नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक और बड़ी बुनियादी संरचना है मिडलैंड्स डैम। इस डैम को सन 2002 में शुरू किया गया था। लगभग 25 मिलियन वर्ग मीटर की क्षमता के साथ देश में जलापूर्ति प्रणाली का ये एक रणनीतिक और जरूरी हिस्सा बन चुका है। इसके बाद सन 2017 में बागातेल डैम का उद्घाटन किया गया था, जिसने लगभग 15 मिलियन वर्ग मीटर की अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता जोड़ी। इससे खासकर मॉरीशस के केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों को काफी फायदा मिलता है। दक्षिण में रिविया दे ज़ोंगी बांध की परियोजना, जिसका जिक्र सन 2009 से हो रहा है, अभी भी पूरी तरह से ये हकीकत नहीं बन सकी है। हालांकि अध्ययन पूरे हो चुके हैं और फंडिंग समझौते पर भी दस्तखत किए जा चुके हैं, लेकिन बदलती मौसम चुनौतियों के सामने सिर्फ नए जलाशय बनाना काफी नहीं है। मॉरीशस को पानी के वितरण नेटवर्क में भी होने वाले नुकसानों को कम करना होगा, आपूर्ति प्रणाली को और बेहतर बनाना पड़ेगा और पानी का ज्यादा टिकाव तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पहले जलाशयों के बनने के एक सदी से भी ज्यादा समय बाद सबसे बड़ा मकसद आज भी वही है, हर आने वाली नस्ल के लिए अनमोल और जरूरी पानी स्रोतों की हिफाजत करना। अनाबेल सवाबादी नई जूनियर पर्यटन मंत्री बनी है और दुनिया पोलो नए जूनियर स्पोर्ट्स मंत्री। कल दोनों ने स्टेट हाउस रेजू में शपथ ली। करेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय की जूनियर मंत्री बन गई हैं। राजनीतिक सतह पर वेरोनिक लुगोविन ने कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। उनके पति गुलशन गोविन की गिरफ्तारी के चलते ये फैसला उन्होंने लिया है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Nous pouvons même considérer, mais pas qu'on finalise ça, hein, si pas, nous pas besoin d'être un système PPS. Donc tout ça peut venir de voir.
2: Le poste, c'est par contre pas Véronique Lugovine, pour combien de temps?
1: Non, parce qu'il lit, toujours une présomption de sens, il n'y a aucune preuve contre lui, mais le fait qu'il y ait l'enquête, il y a une sens qui est meilleur step down. Aussi mon dialogue.
0: Véronique Lugovine, nouveau démocrate parti, c'est bien, il s'est fait des diahens. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रसभा के सामने मालिना श्रीनिवास के सिट इन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उसने एक गर्भवती महिला के साथ बदसुलूकी की और उनके मुताबिक एक मंगलवार को राष्ट्रसभा के सामने प्रदर्शन करना गैर कानूनन है। फिर भी प्रधानमंत्री ने चार व्यक्ति समझकर ये प्रदर्शन होने दिया, लेकिन इन लोगों ने इस इजाज़त का गलत फ़ायदा उठाया है। प्रधानमंत्री कल स्टेट हाउस के जिमी प्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे।
1: Différent avec l'ancien régime. Moi, pas différent avec la police, moi. Vous les autres, faites le travail. Quitte là, l'exemple. S'il y a un médecin au pouvoir, là, pourquoi la police pour débarquer contre Marie, Véronique Lugovine, jamais parce qu'on a ça. Pas oublier, il y en a plein d'exemples avant. Ici, on laisse la police faire ce travail. C'est moi, je l'informe avant, juste avant. On fait ce travail, on ne va pas interférer du tout. Justement, là aussi, on ne va pas interférer, moi. Mais c'est qui m'en apprend, comme je me dis, c'est une explication. Ce qui m'en apprend, c'est l'agression de madame policière qui est enceinte, dans ce ventre, plus une dette

0: 위인로 말라 리싱 올페솔리션 모죠 말라 미다지야 그래 지문 블리게라 dans maudit pas qu'un droit à faire protestation du moins pas le monde dans la loi ça moi mon laissé il y a quatre dimanches faire protestation les yeux tranquilles alors quand vous laissez carré vous donnez un pouce le point de pied
1: कुछ मुर्शनों को पेंशन से वंचित रखने के सभी आरोपों का प्रधानमंत्री ने ठुकराया है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आश्वासन दिया कि किसी से पेंशन हक छीना नहीं जाएगा। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार आज जिन मुश्किलों का सामना कर रही है वो एमएसएम सरकार की गलत संचालन का नतीजा है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
0: Le lamboudis pour. Il n'a dit pas même comprendre qu'il veut dire moudis. Il a dit que le syndicat dit il a voulu moudis pour me. Ah, il y a même pour me. Je ne veux pas vivre dans le real world. Pas capable, parce qu'il dégage nous. Roupies sur compte de l'or. 47 roupies, quelque chose là. Il vient 60 roupies tout de suite là. Qui arrive avec une 60 roupies. Tout prix monté. Parce qu'il n'y a pas de tout. Pour regarder que ça veut dire. Nous pas obliger écoute Moody's, mais nous avons une conséquence de Moody's. Nous rentrons dans, comme nous appelons, ils dégradent nous, disons. Et si vous dégradez, là, hein, si pas nous, là, ils finissent dégradés, là. Comment ils dégradent nous? Nous sommes dans junk state. Junk state, c'est ce que ça veut dire? Junk state veut dire, si on investit dans un pays qui est junk state, on a garanti que vous gagnez un casse-bac. Mais qu'est-ce que vous investissez là, hein? Zéro. Au contraire, ben là, pour tirer sur le casse. Tirer sur le casse, vous êtes allé. Il est là qu'il nous fait. Conséquence, nous pouvons payer conséquence de mismanagement d'MSM. Mais nous pouvons tout faire protestation là. Et puis, on peut dire, hein, pour causer que la président, on peut attendre probablement dans vacances. Beaucoup moins, on peut causer. Et on peut dire, pas pour gagner pension d'un coup là. Fausse. Au contraire, nous faisons gagner une pension à 60 ans. Nous trouvons capable de faire ce que nous faisons.
1: आज राष्ट्रीय सभा के एजेंडे में दो अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल की पेशकश और राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मोरिसिया के इस्तेमाल करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन शामिल है। आद्रिया वालिया की रिपोर्ट पर ये विवरण। दरअसल मॉरिशस के बड़े जलाशयों का इतिहास सूखे के दौरों और बढ़ती हुई आबादी की जल जरूरतों से जुड़ा हुआ है। मोकोवाक्वा जलाशय देश के पानी सप्लाई नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। इसकी पहली बुनियादी संरचना 1885 में बनी थी। दशकों के दौरान इसे कई बार बढ़ाया गया और आज भी ये मॉरिशस का सबसे बड़ा जलाशय है, जिसकी स्टोरेज क्षमता करीब 26 मिलियन वर्ग मीटर है। उत्तर के हिस्से में रानीकुलिया जलाशय है, जो 1929 में शुरू हुआ था। देश की सबसे पुरानी पानी परियोजनाओं में से ये एक है। इसकी क्षमता 5 मिलियन वर्ग मीटर से ज्यादा है और ये आज भी इस क्षेत्र के पानी सप्लाई नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आज राष्ट्रीय सभा के एजेंडे में दो अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल की पेशकश और राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मोरिसिया के इस्तेमाल करने के लिए एक सिमिलर कमेटी का गठन शामिल है। आर्द्रभूमि यानी पानी से भरी जमीनें पर्यावरण के संरक्षण में एक अहम किरदार निभाती हैं। बाढ़ के खतरे कम होते हैं, बायोडायवर्सिटी की हिफाजत की जाती है और जहां ये वेटलैंड्स होते हैं वहां प्राकृतिक संतुलन भी होता है। रेजिस्टेंस से कार्टियन अचीव से डेविड सुवाश के मुताबिक जब एक निर्माण का ताल्लुक एक वेटलैंड से है तो सिर्फ इमारत या ढांचे का जायजा लेना जरूरी नहीं है बल्कि पूरे माहौल पर उसके असर का मूल्यांकन करना आवश्यक है, जैसे प्राकृतिक ड्रेनिंग, पानी की किस्म। डेविड सुवाश स्पष्ट करते हैं कि गांवों के इर्द गिर्द ऐसे वेटलैंड जोन स्थापित करना चाहिए ताकि सैलाब का मसला पैदा ना हो। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की जा रही है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका ये बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब तक ईरान के विदेश मंत्री ने वाशिंगटन के साथ बातचीत करने के दावे को झुठलाया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वन डेर लायन ने पिछले हफ्ते स्पेन के घिरे हुए इलाके सियोटा में प्रवासियों के प्रवेश के सिलसिले में सामूहिक कदम उठाने की मांग की। स्पेन के मुताबिक अब तक 69,500 प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं। सरहद पर स्पेन की तरफ 72 लोगों की मौत हुई है और मोरक्को की तरफ 11 मौतें दर्ज हैं। आज इस मामले पर

0: बातचीत करने के लिए यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की आपात बैठक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाई जाएगी। अब मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं और मस्केरिंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है। इसी वजह से ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिराएंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटों में बारिश होगी। दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। आज रात घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके तेज झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है, खासतौर पर पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:28 पर हुआ है और सूर्यास्त 5:53 पर। आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। कल से पानी की सप्लाई में बदलाव, 2 घंटों के दौरान जलापूर्ति नहीं की जाएगी। देश में सूखे की स्थिति के मद्देनजर CWA को ये कदम मजबूरन उठाना पड़ रहा है। PPS प्रणाली शायद फिर से स्थापित की जा सकती है। कल प्रधानमंत्री ने वेरोनिक लुगोविन के इस्तीफे पर आधारित प्रेस के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। आज राष्ट्रसभा में वेटलैंड्स बिल को पेश किया जाएगा। इसके अलावा संसदीय कार्यों के दौरान क्रेओल मोरिसियन पर सेलेक्ट कमेटी के गठन पर भी चर्चा। और स्पेन तथा मोरक्को की सरहद पर हजारों प्रवासियों के प्रवेश के सिलसिले में यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की आज एक आपातकालीन बैठक। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी कादिया कुदादिन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। अब शोक समाचार सुनिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Hamlet Road, Mont Saint-André, mais 45 salke, 45 years old, Sri Sham. बाईडाई श्री श्याम बाईडाई, जो श्याम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दो बजे इनके भाई नीतीश सिरतन के घर हैमलेट रोड मोसिल मोसैतोंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसिल मोसैतोंद्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। श्रीमय लामो लाग्रेमों सैं पिया में 70 साल की 70 years old श्रीमती भागवंती तिलकदारी। श्रीमती भागवंती तिलकदारी पैदाइशी नाम बोला, जो भगवंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपैर तीन बजे इनके पति ज्ञानन तिलकधारी के घर शमैला मौल आगरे मौसैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्तौसैपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नेहरू लेन फोंजुसाक में 62 साल के 62 years old श्री विद्यारत शर्मा दुलुआ। श्री विद्याव्रत शर्मा दुलुआ, जो भारत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज डेढ़ बजे इनकी पत्नी विद्यावती दुलुआ के घर नेहरू लेन फोंजुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजुसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रामजीत लेन बालिसों रोजबेल में 69 साल की 69 years old श्रीमती सरोज सिकोरी। श्रीमती सरोज सिकोरी पैदाइशी नाम बसवन, जो नीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर बाद एक बजे इनके पति सुखदेव सिकोरी के घर रामजीत लेन बालिसों रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 1 PM। लामेरी ओकूले में 73 साल की 74 years old श्रीमती मोहतरमा साबेरून कालू पैदाइशी नाम रामजान, जो साबेरून के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 11 बजे इनके बेटे मोहम्मद सलीम नूरानी कालू के घर लामेरी ओकुले से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा।

0: funeral today at 11 a.m. Royal Road, Pomplemousse में 63 साल के 63 years old श्री धर्मराज मनबुदुना, श्री धर्मराज मनबुदुना जो धर्म के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दो बजे इनके बेटे राजीव मनबुदुना के घर रॉयल रोड पोम्पलेमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 2 PM। पंडामानिकम लेन रियूनियन वाकवा में 76 साल के 76 years old जनाब मोहम्मद वोसाली जो रशीद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज साढ़े दस बजे इनके घर पंडामानिकम लेन रियूनियन वाकवा से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए सादाली वाकवा की कल्ब इस्लाम मस्जिद और फिर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। मधुलेन पालमा में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पद्मावती मधु पैदाइशी नाम महादेव जो कोकोवाइन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दो बजे इनके घर मधुलेन पालमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 2 PM। फाइल रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड के श्री तुलसीदास बलीराम जो राजेश भईवा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दस बजे इनके घर फाइल रोड हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेनो वाकवा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। टैगोर रोड लालमाची में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पुष्पावती चकुरी पैदाइश नाम राम की सुन की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज 11 बजे इनकी बेटी मानती बहुआ के घर टैगोर रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 11 AM। रेलवे रोड शिमैगोनी में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी गोइंदन गुंडान पैदाइशी नाम तिरुवंगादम जो नायेगी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज डेढ़ बजे इनके घर रेलवे रोड शिमैगोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 1:30 PM। रिजर्वर रोड गॉम्बे में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कुसनावटी लीलू पैदाइशी नाम तायनमैन जो आशा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज एक बजे इनके घर रिजर्वर रोड गॉम्बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थे अमीनूस ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 1 PM। डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट ब्राज़ील में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धमुवंती राम केलावन पैदाइशी नामो मिया जो सरोज के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज साढ़े दस बजे इनके घर डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट ब्राज़ील से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 10:30 AM। B40 ग्रीव लाटू केनिक पॉइंट सैबले में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री कृतानंद मदरा जो मधु मौशों पुमनामू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज दस बजे इनके घर B40 ग्रीव लाटू केनिक पॉइंट सैबले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शुबेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 10 AM। जानकी रोड पुथ्रोदो विलाज में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड श्री बालकृष्ण चमन जो दानेश्वर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज ढाई बजे इनके बेटे सुनील चमन के घर जानकी रोड पुथ्रोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti. Double-digit play.

आपका दिन खुशियों और कामयाबी से भरा रहे। आरम टू रेडियो मस्ती की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। मैं थी आपके साथ पूनम। अब आपको साथ मिलेगा वेदिता का मॉर्निंग बीट में। एंजॉय कीजिएगा अपना दिन और हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट। मैं अपने साथ में आपको बस इतना ही कहूँगी, हमेशा मुस्कुराते रहिए।

0: L'offre à acheter, à offert. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
1: On est tous winners.
2: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा, अपन महीना के मौसवालिते सकबा चुकाए, आप तोहर अप्लिकेशन कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा। सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जो सच्चाई में मायना रखेला। जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा, सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
4: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dip à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter.
3: Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
5: RM2 Radio Musti.

वेरी गुड मॉर्निंग. सुबह के 7:09 हुए हैं. ट्यूसडे 4 अगस्त. विनीता का साथ आपके अपने मॉर्निंग बीच में आपके अपने रेडियो मस्ती पर. बाहर का मौसम बरसाती है, प्लीज बी केयरफुल अगर ड्राइव कर रहे हैं तो. And I wish you a very good morning, my dear friends. साथ रहिएगा, मस्ती करेंगे.

0: should be for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: हेलो जी, कैसे हो जी। सुबह के 7:13 अब 13 क्या होगा कालिया, वही होगा जो होना चाहिए। घर से थोड़ा जल्दी निकल जाओ क्योंकि रोड जो है वो काफ़ी स्लिपरी है, हो सकता है कि आप यहाँ आते आते थोड़ा फंस जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब इवेंट की ओर जाते हैं, लोग जो हैं वो कभी पोट्रीस जाने के लिए यहाँ से गुजरते हैं, मोका वगैरह आप लोग जब आते हैं तो कई सारे लोग हैं जो इस तरफ का रास्ता लेते हैं एंड स्पेशली फेलिक्स की ओर से। तो अगर आप 10 मिनट पहले निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे चलोगे और गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं होगी। क्योंकि अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि रिपाई राउंड अबाउट के बाद जो अगला राउंड अबाउट आता है वहाँ पे हमने देखी एक गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है, ख़राब नहीं बल्कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। सो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग अपना सारा प्रिकॉशन लीजिए, हो सके तो 10-15 मिनट आप निकल जाइएगा, अगर हो सके तो आधा घंटा पहले ही निकल जाइएगा ताकि आपको रोड में कोई परेशानी नहीं हो, आपको बहुत गाड़ी तेज चलानी ना पड़े। क्योंकि जब बारिश होती है तो लोग थोड़ा सा अपना स्पीड को कम कर लेते हैं, जब स्पीड कम होता है तो जितने भी लोगों को जल्दी होती है वो ज़्यादा गाड़ी फास्ट चलाने की, फास्ट लेन पे चलाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा जल्दी निकल जाओ अगर आपको जल्दी रहती है, अदरवाइज़ बाकी जो लोग हमारे साथ हैं थैंक यू सो मच। अगर आप हमें बताते चलें आपके यहाँ भी मौसम कैसा है, बारिश हो रही है क्या, अगर हो रही है तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन द रोड। ओके, 7:15 हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर में आ रहे हैं लेकर आपके लिए गेम, अगर आपने सही जवाब दिया क्या पता इनाम आपके नाम।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो हम भी एक दूसरे से मिल जाते हैं जैसे दो जिस्म एक जान। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ ज्यादा हो गया। 7:17 हुए हैं। चलो खुश करने की कोशिश करियो भाई, स्माइल कर दो। मॉर्निंग मॉर्निंग में ऐसा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता, एक स्माइल तो बनती है, एक थोड़ा सा और थोड़ा सा। इतना कंजूसी मत करो यार, थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ ये हुई ना बात, चलो ठीक है अब मैं खुश हो गई। और जब मोगैम्बो खुश होता है तो गिफ्ट देता है। चलो तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक गेम, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको मिलेगा मौका इनाम जीतने का और आपको मिलेगा विनर्स की तरफ से ₹500 का गिफ्ट वाउचर। और ये वाउचर उसी को मिलेगा जो देगा मेरे सवाल का जवाब। मेरे सवालों बारिश का असर है, मैं गाने लगी सॉरी। हाँ तो आज के लिए आपका सवाल, अंटिल 6 अगस्त व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ मैरिलिन पुले एंटिये 500 grams। यस अंटिल 6 अगस्त व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ मैरिलिन पुले एंटिये 500 grams। आपको जवाब देने हैं ऑन 5499-1294। याद रखिए पूरे नाम और पते के साथ एंड प्लीज मेक इट फास्ट।
3: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: हटा दिया हटा दिया.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो जी, सबका नाम यहाँ पर आया और सबके नाम के पास यहाँ पर एक वाउचर रखा है जो हमें पोस्ट करना है आपके लिए. और हम ये जानना चाहते हैं कि ये वाउचर जाएगा किसके लिए. हमारा सवाल था, अनटिल 6th of August व्हाट इज़ द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ मार्गरिन नेपोलियन 500 grams. एंड सही जवाब है नॉर्मल प्राइस 134 rupees 89 cents और प्रमोशनल प्राइस है 94 rupees 95 cents. कौन बना हमारा जीदार? Alright, तो यहाँ पर लकी ड्रॉ के बाद बीनू सीचन आपका नाम आया है. कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहा है एमबीसी और विनर्स के साथ खेलने पर 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर और ये वाउचर आपके लिए पोस्ट कर दिया जाएगा. थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए. चलिए म्यूजिक का ये सफर जारी है आपके लिए आपके अपने रेडियो मस्ती पर.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: शेर को हम खोलने नहीं दे सकते, जाने नहीं दे सकते. आज का जो मौसम है ऐसे में तो नहीं खोल सकते. चलो 7:30 हुए हैं, यू लिसनिंग टू मॉर्निंग बीट में दीदा के साथ. और चलिए आपसे बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आज आपके फैमिली में कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, अगर आप उनको विश करना चाहते हैं और उनका जो दिन है स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर उनका जो नाम है और जो उनका फ़ोन नंबर है वो मुझ तक भेजिए ऑन 549 1294. दोनों हाइपर मार्केट की तरफ से कोशिश करेंगे आज का जो दिन है उनका स्पेशल बनाने की.

0: वैसे बैकग्राउंड में रेडियो सुन रहे हैं ये तो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करते हैं, मिलते हैं इनसे, जानते हैं कि कौन है आज हमारे साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार जी, मेनिका विदेशी, राइट?
1: हाँ, मेनिका विदेशी है।
0: अच्छा जी, आपको पता है कौन आपसे बात कर रही है?
1: हाँ विदिता जी।
0: अरे यार, मुझे पता था
1: आपकी आवाज को नहीं पहचानते।
0: फिर तो आपको पता चल गया होगा कि हमने आपको फोन किया है ये कहने के लिए।
1: हाँ

0: फ्रॉम रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां हैं।
2: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रियली ग्रेट प्लेजर फॉर मी
1: टू
2: हियर योर वॉइस एंड टू हियर माय हैप्पी बर्थडे। थैंक यू
1: फॉर माय आई कैन फील, मैं फील कर सकती हूँ आपके चेहरे पे जो खुशी है, आपकी वॉइस पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें मौका मिलता है एवरी मॉर्निंग लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सो मैं आपको बता दूं, आपको लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है और ये वाउचर आपको कलेक्ट करना है या तो फिर आज या तो फिर कल अपने आईडी कार्ड के साथ। आपके बेटे भी आ सकते हैं कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आपका आईडी जरूरी है। और आपको हमारी पूरी रेडियो मस्ती टीम की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। खुश रहिए, रेडियो मस्ती सुनते रहिए और सारे प्रॉब्लम सारे स्ट्रेस से दूर रहिए। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू। चलिए
1: तो

0: star.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
4: यस दोस्तों, बहुत टाइम के बाद आज हमारे साथ स्टूडियो में वो शख्स बैठा है जिसके साथ जब भी हम मिलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आई मीन स्पोर्ट्स की बातें होती है। चलिए, समय हो गया है दोस्तों स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर जाकर ये जानने का कि क्या चल रहा है। आइए मिलते हैं हमारे दोस्त विकास रामदिनी से। गुड मॉर्निंग, नमस्कार।
5: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार वेदिता, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू स्पोर्ट्स फैंस। लाइव कर रहे हैं आज अभी तीन तीन लाइव्स यहाँ पर है
4: जी।
5: एक मैं और एक टू और एक पूनम भी यहाँ पर है
4: जी, बिल्कुल। तो
5: अच्छा लगा, बहुत साल बाद लाइव कर रहे हैं और लाइव का अलग मजा होता है। और जब जागा कहते हैं तब सवेरा ना, सो आज सवेरे वाली गाड़ी से लेकर हम सब आगे हैं।
4: आपकी गाड़ी रेडी है यहाँ?
5: हाँ, एकदम रेडी। थैंक यू। सो स्पोर्ट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेलों से इसको शुरू करते हैं जो समाप्त हो गए हैं, लेकिन चार पदक और 15वां स्थान प्राप्त करने के बाद मॉरिशस के हमारे अधिकतर एथलीट्स, खिलाड़ी एवं अधिकारीगण आज सुबह 9:25 पर स्वदेश लौट रहे हैं। हवाई अड्डे पर निस्संदेह इनका भव्य स्वागत किया जाएगा, परिवार वाले तो होंगे ही। अखा मॉरिशस आपका साथ देने के लिए तैयार है। फिर कल सुबह भी इसी समय यानी कि 9:25 पर हमारा गोल्डन बॉय जूडो के अपने मंडल सहित देश में होंगे। वास्तव में रेमी फेये ने जूडो के लेस 90 kg वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया और 28 साल बाद उसने मॉरिशस को शीर्ष पोडियम दिलवाया। गर्व से ग्लासगो में हमारा चौरंगा झंडा फहराया गया और राष्ट्रीय धुन भी गाई गई। नोएमी अल्फोंस ने 2 सिल्वर मेडल, रजत के पदक हासिल किए, उसको भी हार्दिक बधाई। तो मेवें क्लेयर ने मुक्केबाजी में 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कुल 4 पदक, 74 देशों में 15वां स्थान। जय हो मॉरिशस की। अब अगले राष्ट्रमंडल खेल साल 2030 में यानी 4 साल बाद अहमदाबाद भारत में लगने वाले हैं, जो सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स कहे जा रहे हैं। 1930 में ये पहली बार आयोजित किए गए थे। फुटबॉल में सेल्टिक ने अपने टाइटल का डिफेंस एक छोटी सी जीत के साथ किया। सेल्टिक ने कल अपने पहले मैच में डंडी को 1-0 से दंड दिया। सो पिछले साल के टॉप स्कोरर बेन्यामिन नाइग्रेन ने ही गोल तो बनाया, किंतु किरण चेने फिर बना बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच। और इंग्लिश लीग कप के प्रीलिम राउंड में कल जो मात्र मैच खेला गया उसमें क्रॉली ने यॉर्क को 2-0 से परास्त किया। फुटबॉल में ही डैनी वेलबेक के बाद जॉर्डन एंडरसन भी अब चेल्सी का हो गया है। जॉर्डन एंडरसन लिवरपूल के इस पुराने खिलाड़ी ने कल द ब्लूज के साथ अपने पुराने साथी क्साबी अलोंसो के साथ 2 साल के नए कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। लगता है द ब्लूज चेल्सी अब अपने बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। लिवरपूल की बात हुई तो वो अभी भी ब्रैडली बाकुला पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया हुआ है, किंतु इस बीच उसका डिफेंस अभी भी कमजोर है। लीड्स यूनाइटेड ने उसके सारे घमंड चकनाचूर कर दिए, इसीलिए बूढ़े शेर वर्जिल वान डाइक का साथ देने के लिए कोई तो सॉलिड जवान डिफेंडर होना चाहिए और इस कारण तलाशी जारी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड शुड बी बैक वन मोर टाइम, अन्यथा इतराते रहेंगे, कटराते रहेंगे और हम सुनाते रहेंगे। साइकिलिंग में माचन किम महिला टूर डी फ्रांस के तीसरे चरण में 5वां स्थान प्राप्त करने के बावजूद किम लेकू दे पिना जनरल क्लासिफिकेशन में 2रे स्थान पर है। वो नॉर्वे की सिगरिड होगसेट से 2:02 पीछे है। इन सिगरिड की ही कल जीत हुई, आज चौथा चरण जारी रखा जाएगा। तो टेनिस में विलियम्स बहने फिर से टेनिस कोर्ट पे उतर रही हैं। 44-year-old सेरेना और 46-year-old वीनस को सिंसिनाटी ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। यदि सब कुछ ठीक चला तो सेरेना कुड बी बैक टू प्ले इन द US ओपन। सुनते रहिए। बैक टू फुटबॉल, फुलहम ने रियल मैड्रिड के 22-year-old 22 वर्षीय गोंजालो गार्सिया और 21 वर्षीय सेजा पलासियोस को साइन किया है, एक फॉरवर्ड और एक मिडफील्डर। फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो के विरोध में फुटबॉल प्रेमियों की गिनती बढ़ती जा रही है। उसके असफल प्लान टू सेल ऑफ स्टेक्स इन फीफा के विरोधी नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग की धमकी दे रहे हैं। देयर इज नो गोइंग बैक, उसे जाना ही होगा। उल्लेखनीय है कि मार्च

0: 2027 में ज्ञानी इन्फांटिनो फिर से रीइलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। और फ्रेंडलीज में आज रात बायर्न म्यूनिख एवे जाएगी जेजू के यहाँ, तो एएस रोमा टक्कर लेगा न्यूपोर्ट से। किंतु कल 5 अगस्त से जबरदस्त फ्रेंडली मुकाबले होंगे। आर्सेनल का मुकाबला कल रियल बेटिस से, चेल्सी खेलेगा यूवेंटुस के विरुद्ध, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस के लीग ऑल स्टार्स, तो 8 अगस्त को मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला पेरिस सेंट जर्मेन से। भूलेगा नहीं 16 अगस्त को एफए कम्युनिटी शील्ड के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत औपचारिक रूप से हो रही है, उसका कर्टेन, उसका पर्दा खुल रहा है। सो 21 अगस्त से बजेगा बैंड प्रीमियर लीग का, सुनते रहिए और मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी 8:30 बजे।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco, fin l'osso extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies. Des pieds pas 4 pieds pour 295 roupies.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Moments that matter with Seekum.
3: जीवन के सबसे खूबसूरत पल स्क्रीन के आगे नहीं बल्कि उस सब जना संगे जियल जाला जिकरा हमने खुशी रहिला जा। यही खातिर सिकोम लगे जिंदगी के आसान बनाए खातिर डिजिटल माध्यम अपनाई ले है जा जिकर से आप सब औसन पल जस्ती बिताई जोन तोहर खातिर जस्ती मायना रखेला। एगो को ताशो खोजा था वह बस कुछ क्लिक में तैयार हो जाए अपन प्रीमियम के पैसा चुकाए खोजा था वह ये आसान बा। आप सब हमने के ऑनलाइन पेमेंट के सुविधा से हाली से आर बिना डरे एकदम सुरक्षित तरीका से ऊ चुकाए। अपन पॉलिसी देखे के हो या अपन अप्लिकेशन कहाँ पहुँचल बाटे ये जाने खोजा था वह आप ये सब कहूँ से कबो भी अपन सुविधा के अनुसार कर सकब। सिकोम की डिजिटल सेवा के एक के गो मकसद है तोहर पूरा अनुभव आसान सीधा और बिना कोनो झंझट के बनाए के। काहे की सबसे नीमन टेक्नोलॉजी उहे है जो तोहर जिंदगी के उस सब खास पल के पूरा आनंद ले के समय दे जो सच्चाई में मायना रखेला। इबे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: It was moments that matter with Seekum.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay ou que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402-8000.
0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
1: Radio Musti. Musti. Musti.
5: चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ अब हम बढ़ने जा रहे हैं 8 बजे के समाचारों की ओर। इस पार मुलाकात होती है आप ही के अपने प्रोग्राम के साथ जो है रेडियो मस्ती पर आपका मॉर्निंग बीट।

आवाजा समाचार सुना जा पानी के रिजर्व घटता होला जातबा सेंट्रल वाटर अथॉरिटी फिर से अपन वितरण योजना पर गौर करता आवत सोमवार से नए कदम लागू कर जाए सके पूरा देश में पानी के सप्लाई में कटौती लावल जालबा काल बुधवार से जल आपूर्ति के 2 घंटा से कम करे के फैसला लेवल कर 10 अगस्त से नवा कदम लागू करल जाल बाते सिर्फ सब्जी के खेती के खेतों में सिंचाई करल जा सकेला कौवाश स्थल के पीने के पानी इस्तेमाल करे के इजाज़त नहीं बा मुरीस में कम बारिश होल बा यही खातिर जलाशय में पानी के स्तर घटता बा जलाशय जैसन मजबूत ढांचा के होते हुए भी आज उस जलवायु परिवर्तन के चुनौती के सामने कमजोर बातें महुवाकुआ लानिकोलिया मिडलैंड और बागातेल डैम ये सारे जलाशय कोनुना कोनु कहानी दर्शाएला गल बरिस में सूखे के स्थिति के चलते आज के नवा नस्ल खातिर एकर निर्माण करल कर रहल बातें एनाबेल सवाबादी नई जूनियर पर्यटन मंत्री बनेला और टोनी अपोलो नवा जूनियर स्पोर्ट्स मंत्री काल दुनो स्टेट हाउस रेजी में शपथ लेलन कारण फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय के जूनियर मंत्री बन गल राजनीतिक सतह पर वेरोनिक ले गोविन कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री के हैसियत से इस्तीफा दे लेबा ऊ नुवो डेमोक्रेट पार्टी से भी इस्तीफा

0: डेली पा। राष्ट्रीय सभा के एजेंडा में आज दुगो अहम कार्य शामिल बातें, उमें पहली परहत पर वेटलैंड्स बिल के पेशकश बातें और राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मुगिसिया के इस्तेमाल खातिर एगो सिलेक्ट कमिटी के गठन शामिल बातें। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बताइले बा कि ईरान के संगे बातचीत करल जात बा और ईरान खातिर एगो आखिरी मौका बाते। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसर मुल्क के दरख्वास्त पर अमेरिका ये बातचीत करे के तैयार होलबा, लेकिन अब तक ईरान के विदेश मंत्री वाशिंगटन के साथ बातचीत करे के दावे के झुठलाए ले बा। तो ये रहर समाचार। नमस्ते और सलाम।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: A very good morning and welcome to Radio Musti. बिल्कुल यहाँ पर मैं विदिता आपके साथ हूँ आपके मॉर्निंग बीट में और सुबह के 8:08 हुए हैं. हम साथ साथ हैं जी हाँ. तो नहीं बोल सकते हम 8:08 हैं, नहीं हम 8:08 भी हैं क्योंकि 8:08 हुए हैं. चलो तो विनीता आपका वेलकम करती है एक बार फिर से हमारे इस मॉर्निंग बीट के सेकंड आवर में. आई जस्ट होप कि आप लोगों को हमारे गाने अच्छे लग रहे हैं और आप लोग झूम रहे हैं. एंड लाइक आई सेड कि बाहर बारिश है. अभी नीतू भी अपने छाते के सताई पूरे भीगी हुई. उसको देख के मेरे को गाना याद आया, एक लड़की भीगी भागी सी. और कभी इधर भाग रही कभी उधर भाग रही है. उसको डांट के मैंने बोला जा पहले अपने बाल सुखा. तो अभी वो अच्छी बच्ची की तरह बाल सुखा के आके बैठी है. चलो अभी हम भी यही कहेंगे कि आप घर से निकल रहे हो, डोंट फॉरगेट योर छाता. और अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो कभी कभी गाड़ी से निकल के इधर उधर जाते चप्पल जो हैं जूते जो हैं भीग जाते हैं. तो मेक श्योर ऑलवेज कि आपकी गाड़ी में एक जोड़ा कपड़ा हो, आपके चप्पल हो या आपके जूते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक टॉवल हो ताकि अगर कल को अगर आप भीग भी गए तो आपको पता है कि आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं या जूते हैं, आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बाकी मौसम का हाल सुमेरा से जान ले.
3: आम हालत, पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं. मस्करविंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिराएंगे. पूर्व और सेंट्रल प्लाटू में बारिश होगी, दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा. आज रात घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी. हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. और लगुनों के उस पार समुन्दर खराब रहेगा, 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगुनों में. इसी वजह से पूर्व और दक्षिण वाले लगुनों में न जाने की सलाह है. तापमान, सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24. साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय 6:38 पर और आज शाम को 5:53 पर सूरज ढल जाएगा.
4: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: La foire Bilbil Kaji, retourne Cot Winners.
6: Bilbil Kaji de retour Cot Winners. Du 24 juillet au 6 août uniquement. La lessive liquide Homo automatique pour machine de 3 litres à 249,95 roupies. Et du lundi 3 août au jeudi 6 août, le riz basmati Fatima Gold de 5 kilos à 319,95 roupies. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
7: On est tous winners.

0: रही मेरी कमर।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: देखो झूठ मत बोलो, आप लोगों ने भी हिलाने की बड़ी कोशिश की लेकिन हिलता नहीं है, कमर कमरा बन जाता है तो ऐसा ही होता है। इसलिए अब कहते हैं हमारे इस मॉर्निंग बीट के साथ रोज जुड़े रहो, जैसे म्यूजिक चलता है डांस करना शुरू कर दो, बॉडी को हिलाते रहो और फिर देखना एक दिन नोरा की तरह आप भी डांस करोगे। फिलहाल अभी तो दिमाग को तेज करने का टाइम आ गया है और सही जवाब देने का टाइम आ गया है। जी हाँ, हम लेकर आए हैं आपके लिए गेम सुबह के 8:20, काम तक नहीं पहुंचे या पहुंच गए कहां हो, चलो कोई नहीं। लेडीज जो घर पे हैं, चलो जल्दी से मोबाइल को रेडी कर लो और ध्यान से मेरी बात सुनो और मेरे सवाल का जवाब दो। आपको पता ही है कि हम लोग रोज यहां पर बात कर रहे हैं राजस्थान वर्क्स का जो अभी आने वाला है उत्सव, इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल, इसके बारे में काफी बातें हो रही हैं। यस, द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड और यहां पर अगर आप MBC और राजस्थान वर्क्स के साथ खेलेंगे तो आपको इनाम मिल सकता है। क्या मिलेगा? वेल, यू कैन विन 4 एंट्री टिकट्स एंड अ फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC और ये शुरू हो रहे हैं 12 अगस्त को, चलेगा 16 अगस्त तक एट SBICC पाई, ये चलेगा दिन के 10 बजे से रात के 9 बजे तक। देखो भाई, हमने आपको कहा था कि इन 5 दिनों में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन, और हमने आपको ये भी कहा था कि इसमें इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस भी होने वाला है। बाकी और बताऊँ क्या होगा, फूड फेस्टिवल, ब्लड डोनेशन कैंप, कानमा शो, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, लेकिन मैंने एक कहा था ना कि लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है बाय इंडियन आइडल सिंगर। जी हाँ, उस सिंगर का नाम क्या है, आपको मुझे सिंगर का नाम बताना है। मैं रोज उनका नाम लेती हूँ, मैं रोज आपको बोलती हूँ सच अ क्यूट गाय, इतना दिल से गाता है एंड वैसे मैं इनको पर्सनली भी जानती हूँ। लास्ट टाइम जब ये आए थे तो इनसे मुलाकात हुई थी, इनसे बात हुई थी, अपने ग्रुप के साथ आए थे। क्या परफॉर्मेंस है इनका भाई, एक बार अगर आप सुनना बैठ जाओ ना फिर आपका उठने का मन नहीं करता, इनको खुद बुला के करना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा डांस कर लो। तो चलो आप मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे इंडियन आइडल सिंगर हैं जिनका लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है, इनका नाम क्या है?

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: And yes, dear friends, हमने बहुत ही एक आसान सा सवाल आपसे पूछा था और आपको मुझे सही जवाब देना था और यहाँ पर चलिए देखते हैं कि हमारा सवाल था कि ये जो उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल हो रहा है इसमें जो इंडियन आइडल का जो सिंगर लाइव परफॉर्म करने आ रहा है उनका नाम आपको मुझे बताना था, उनका नाम क्या है एंड द राइट आंसर इज परिणय जैन। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया है, थैंक यू। लेकिन सही जवाब देकर विनर

0: बनी है करिश्मा रामजतन फ्रॉम एमिताज. थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया, आपको मिल रहा है यहाँ 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. 12 अगस्त से 16 अगस्त SVICC पाई में लग रहा है, दिन के 10 बजे से रात के 9 बजे तक, जहाँ पर आप 5 दिन का शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एंड इट्स ऑर्गेनाइज बाय इवेंट Works Limited. Congratulations, आपको आना है MBC अपने ID कार्ड के साथ टू कलेक्ट योर टिकट्स एंड योर फूड कूपन एट MBC सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच.
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2 Radio.

0: एंड यस दैट्स बादशाह फॉर यू ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. चलिए इसी के साथ अगर आपने हमारा स्पोर्ट्स मिस कर दिया तो एक बार फिर मिलते हैं विकास रामदनी के साथ
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
3: स्पोर्ट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है. राष्ट्रमंडल खेलों से इसको शुरू करते हैं जो समाप्त हो गए हैं, लेकिन चार पदक और 15वां स्थान प्राप्त करने के बाद मॉरिशस के हमारे अधिकतर एथलीट्स खिलाड़ी एवं अधिकारीगण आज सुबह 9:25 पर स्वदेश लौट रहे हैं. हवाई अड्डे पर निस्संदेह इनका भव्य स्वागत किया जाएगा. परिवार वाले तो होंगे ही, अखा मॉरिशस आपका साथ देने के लिए तैयार है. फिर कल सुबह भी इसी समय यानी कि 9:25 पर हमारा गोल्डन बॉय जूडो के अपने मंडल सहित देश में होंगे. वास्तव में रेमी फेये ने जूडो के लेस 90 kg वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया और 28 साल बाद उसने मॉरिशस को शीर्ष पोडियम दिलवाया. गर्व से ग्लासगो में हमारा चौरंगा झंडा फहराया गया और राष्ट्रीय धुन भी गाई गई. नोएमी अल्फोंस ने 2 सिल्वर मेडल रजत के पदक हासिल किए, उसको भी हार्दिक बधाई. तो मेवें क्लेयर ने मुक्केबाजी में 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. कुल 4 पदक, 74 देशों में 15वां स्थान. जय हो मॉरिशस की. अब अगले राष्ट्रमंडल खेल साल 2030 में यानी 4 साल बाद अहमदाबाद भारत में लगने वाले हैं जो सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स कहे जा रहे हैं. 1930 में ये पहली बार आयोजित किए गए थे. फुटबॉल में सेल्टिक ने अपने टाइटल का डिफेंस एक छोटी सी जीत के साथ किया. सेल्टिक ने कल अपने पहले मैच में डंडी को 1-0 से दंड दिया. सो पिछले साल के टॉप स्कोर है बेन्यामिन नाइग्रेन ने ही गोल तो बनाया किंतु किरण चेने फिर बना बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच. और इंग्लिश लीग कप के प्रीलिम राउंड में कल जो मात्र मैच खेला गया उसमें क्रॉली ने योर्क को 2-0 से परास्त किया. फुटबॉल में ही डैनी वेलबेक के बाद जॉर्डन एंडरसन भी अब चेल्सी का हो गया है. जॉर्डन एंडरसन लिवरपूल के इस पुराने खिलाड़ी ने कल द ब्लूज के साथ अपने पुराने साथी क्साबी अलोंसो के साथ 2 साल के नए कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए. लगता है द ब्लूज चेल्सी अब अपने बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं. लिवरपूल की बात हुई तो वो अभी भी ब्रैडली बाकुला पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया हुआ है, किंतु इस बीच उसका डिफेंस अभी भी कमजोर है. लीड्स यूनाइटेड ने उसके सारे घमंड चकनाचूर कर दिए, इसीलिए बूढ़े शेर वर्जिल वान डाइक का साथ देने के लिए कोई तो सॉलिड जवान डिफेंडर होना चाहिए और इस कारण तलाशी जारी है. कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड शुड बी बैक वन मोर टाइम, अन्यथा इतराते रहेंगे, कटराते रहेंगे और हम सुनाते रहेंगे. साइकिलिंग में माचन किम महिला टूर डी फ्रांस के तीसरे चरण में 5वां स्थान प्राप्त करने के बावजूद किम लेकू दे पिना जनरल क्लासिफिकेशन में 2रे स्थान पर है. वो नॉर्वे की सिगरिड होगसेट से 2:02 पीछे है. इन सिगरिड की ही कल जीत हुई, आज चौथा चरण जारी रखा जाएगा. तो टेनिस में विलियम्स बहने फिर से टेनिस कोर्ट पे उतर रही हैं. 44-year-old सेरेना और 46-year-old वीनस को सिंसिनाटी ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है. यदि सब कुछ ठीक चला तो सेरेना कुड बी बैक टू प्ले इन द US ओपन. सुनते रहिए. बैक टू फुटबॉल, फुलहम ने रियल मैड्रिड के 22-year-old 22 वर्षीय गोंजालो गार्सिया और 21 वर्षीय सेजा पलासियोस को साइन किया है. एक फॉरवर्ड और एक मिडफील्डर. फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो के विरोध में फुटबॉल प्रेमियों की गिनती बढ़ती जा रही है. उसके असफल प्लान टू सेल ऑफ स्टेक्स इन फीफा के विरोधी नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग की धमकी दे रहे हैं. देयर इज नो गोइंग बैक, उसे जाना ही होगा. उल्लेखनीय है कि मार्च 2027 में ज्ञानी इन्फांटिनो फिर से रीइलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है. और फ्रेंडलीज में आज रात बैन म्यूनिक एवे जाएगी जेजू के यहाँ, तो एएस रोमा टक्कर लेगा न्यूपोर्ट से. किंतु कल 5 अगस्त से जबरदस्त फ्रेंडली मुकाबले होंगे. आर्सेनल का मुकाबला कल रियल बेटिस से, चेल्सी खेलेगा यूवेंटुस के विरुद्ध, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस के लीग ऑल स्टार्स. तो 8 अगस्त को मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला पेरिस सेंट जर्मेन से. भूलेगा नहीं 16 अगस्त को FA कम्युनिटी शील्ड के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत औपचारिक रूप से हो रही है. उसका कर्टेन, उसका पर्दा खुल रहा है. सो 21 अगस्त से बजेगा बैंड प्रीमियर लीग का, सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

दोस्तों सपने तो हम सब देखते हैं और हम चाहते भी हैं कि हमारे सपने सच हो जाए, लेकिन सपने को सच करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आज जो पसीना बह रहा है वही कल आपकी पहचान और जीत की वजह बनेगा। मेहनत का रिजल्ट हमेशा तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी सक्सेस को टाइम लगता है, लेकिन हर दिन की कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। जो लोग मुश्किल वक्त में भी मेहनत करते रहते हैं वही आखिर में अपने गोल्स अचीव करते हैं। देखो भाई, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मेहनत आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। रोज़ के छोटे एफर्ट्स मिलकर बड़े अचीवमेंट्स बनाते हैं। कभी अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ आज से मत कंपेयर करो, एक साल की कंसिस्टेंट मेहनत ज़िंदगी बदल सकती है। इसीलिए सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें सच बनाने के लिए हर दिन मेहनत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, दोस्तों, you're listening to Radio Musti और मैं हूँ विदिता आपके साथ आपके अपने मॉर्निंग बीट में. भाई, इस टाइम पे तो सभी बिजी भी बन ही जाते हैं. हर किसी को देखो अपने काम के साथ जुड़ जाते हैं. कुछ लोग ऑफिस जल्दी पहुँचना पसंद करते हैं. फिर उनको क्या होता है ना कि 10 मिनट बैठते हैं, कॉफ़ी वॉफी पीते हैं. बहुत सारे लोग मॉर्निंग में ऑफिस में आके नाश्ता करते हैं, कहते हैं हम लोगों ने स्किप कर दिया ना अपना ये जो हमारा ट्रैफिक था, तो ऑफिस में पहुँच गए, 10 मिनट हैं तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आराम से काम करेंगे. ये होता है होशियार लोग जो कि क्या कहते हैं ना कि कभी आप लोग देर से निकलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं. जब ऑफिस पहुंचते हैं तो काम करना शुरू करना पड़ता है, तो क्या होता है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो मिस हो जाता है. कभी अपना ब्रेकफास्ट मिस मत करना. एटलीस्ट घर से जब आप निकलते हो तो हमेशा आप कुछ पी के निकला करो. आपका जो प्रोटीन शेक होता है वो पी लिया करो, फ्रूट्स खा लिया करो. कम से कम आपकी बेली में कुछ ना कुछ तो होगा, वरना करता रहेगा और आपको बताता रहेगा भाई भूख लगी है खाना खिला दे, भूख लगी है खाना खिला दे. और इससे पहले कि मेरी बेली शोर करना अभी शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं मॉर्निंग में जब हमारे गाने चलते हैं. तो अगर आप लोगों को भी एक्सरसाइज करना है तो प्लीज़ ज्वाइन मी. और बाकी जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें उनको मैं कहूँगी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. काफ़ी सारे यहाँ पर मैसेज आए थे, थैंक यू सो मच गाइज. और हमारे इस प्रोग्राम में चलिए हम नेक्स्ट गाना हस्बैंड विशाल जीतन के नाम डेडिकेट करेंगे, जो मौसल में सैदांधे रहते हैं. उनकी वाइफ आरती ने उनको बहुत सारा प्यार भेजा और वहीं पे ये नेक्स्ट गाना जो होगा हमारा डेडिकेट करते हैं उन सभी दोस्तों के लिए जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं. एंड ऑल्सो फॉर हस्बैंड जूना प्रवीण चातू जो कि है गुडलैंड से, उनका आज बर्थडे है. फ्रॉम मामा पापा तुलसी नवीन, वाइफ काजल, बेटे कबीर और बेटी क्यारा की तरफ से.

चलिए जी, अभी चिंता दूर करने की बारी आ गई है। अगले गाने के साथ हम आपको बाय बाय कहेंगे और आपसे मुलाकात कल मॉर्निंग में करेंगे 7 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। बाहर का जो मौसम है कह रहे हैं गाड़ी जरा स्लो ड्राइव करें और तबीयत का भी थोड़ा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।

0: समाचारों को लेकर सुमैरा आ चुकी है। सुमैरा, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार राधा। पानी के रिजर्व घटते जा रहे हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने फिर से अपनी वितरण योजना पर गौर किया है। आते सोमवार से नए कदम लागू किए जाएंगे। पूरे देश में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल बुधवार से जल आपूर्ति को 2 घंटों से कम करने का फैसला लिया गया है। कौवाश स्थलों को पीने का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। उच्च दबाव वाली मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और नल पानी से स्विमिंग पूल को भरने की अनुमति भी नहीं होगी। अनाबेल सवाबादी नई जूनियर पर्यटन मंत्री बनी है और तुनी अपोलो नए जूनियर स्पोर्ट्स मंत्री। कल दोनों ने स्टेट हाउस रेजी में शपथ ली। कारेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय की जूनियर मंत्री बनी है। राजनीतिक स्तर पर वेरोनिक लुगोविन ने कल एवं संस्कृति जूनियर मंत्री की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। उनके पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने नुवो डेमोक्रेट पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरीज पीपीएस प्रणाली फिर से स्थापित की जा सकती है। स्टेट हाउस रेजी में कल नए जूनियर मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने राष्ट्रसभा के सामने मालिना श्रीनिवास के सिटिंग को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उसने एक गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि एक मंगलवार को राष्ट्रसभा के सामने प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। फिर भी प्रधानमंत्री ने 4 व्यक्ति समझ कर ये प्रदर्शन होने दिया, लेकिन इन लोगों ने इस इजाजत का गलत फायदा उठाया है। आज राष्ट्रसभा के एजेंडे में 2 अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल को प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रसभा में क्रियोल मोरिशिया के इस्तेमाल करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन भी किया जाएगा। विदेश में यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वन डर लायन ने पिछले हफ्ते स्पेन के घिरे हुए इलाके सियुता में प्रवासियों के प्रवेश के सिलसिले में सामूहिक कदम उठाने की मांग की। स्पेन के मुताबिक अब तक 69,500 प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं। सरहद पर स्पेन की तरफ 72 लोगों की मौत हुई है और मोरक्को की तरफ 11 मौतें दर्ज हैं। आज इस मामले पर बातचीत करने के लिए यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की आपात बैठक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाई जाने वाली है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।

0: ये कमाल है ना, कोई हमारी जिंदगी में आ जाते हैं सवालों का जवाब बनकर आ जाते हैं, कोई हमारी जिंदगी में बहार बनकर आ जाते हैं। वैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम हियर, गुड मॉर्निंग। 9:08 हुए हैं ट्यूसडे 4th of August 2026 में, मस्ती मॉर्निंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मनीष की तरफ से।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty.

0: You're listening to Masti Mornings.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
0: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.
2: चलिए जी, मोहित चौहान की आवाज में तुमसे ही फ्रॉम द मूवी जब वी मेट स्पेशली फॉर यू इन दिस मॉर्निंग शो में आपके मॉर्निंग को और भी मजेदार बनाने के लिए, आपके ब्रेकफास्ट को एकम्पनी करने के लिए हम यही पर रहेंगे दिन के 12 बजे तक. स्टे वेल कनेक्टेड, स्टे वेल ट्यून्ड.

0: You're listening to Masti Mornings.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
0: Stay tuned, stay musty. Radio

0: वही सात समंदर, वैसे डिस्टेंस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ लव. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तो नंबर ही है आपके पास 5491294 पर, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो ये मैसेज आप हम तक भी पहुंचा सकते हैं आपके दिल की बात. जी हाँ, वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन वैसे थोड़ी देर में और इसको. You can find me in the club,
1: bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: बजकर 42 मिनट है, आप जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं विद योर हॉरोस्कोप विद मेष राशि।
2: एरीज, मेष राशि,
1: आज किसी नए काम की शुरुआत के लिए शुभ दिन है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और फैसला सोच समझ कर करें। लकी नंबर आपका नंबर 3।
2: टॉरस, वृषभ राशि,
1: पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। लकी नंबर 8।
2: जेमिनी, मिथुन राशि,
1: आपकी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन आज सबका दिल जीत लेगी। किसी पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा हो सकता है आपको। लकी नंबर 5।
2: कैंसर, कर्क राशि,
1: इमोशंस को बैलेंस में रखें। घर और काम दोनों जगह पर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। लकी नंबर 2।
2: लियो, सिंह राशि,
1: आज आपके लीडरशिप और कॉन्फिडेंस की सब तारीफ करने वाले हैं। किसी नए प्रोजेक्ट का ऑफर भी मिल सकता है आपको। लकी नंबर 1।
2: वर्गो, कन्या राशि,
1: छोटी छोटी

0: बातों पर ध्यान देने से बड़ा फायदा होगा आपको। वैसे आज हेल्थ को इग्नोर ना करें। लकी नंबर नंबर 6,
1: लिब्रा तुला राशि।
0: रिश्ते और दोस्ती दोनों में मिठास बनी रहेगी। आज कंप्रोमाइज करने का मौका मिलेगा और इससे भी आपको फायदा भी हो सकता है। लकी नंबर नंबर 7,
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन में अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें। लकी नंबर नंबर 9,
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: लर्निंग और ट्रेवल के योग बने रहेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड से ये चैलेंज भी आसान लगने वाले हैं आपको। लकी नंबर नंबर 4,
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस नोटिस में आ जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आज दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी नंबर नंबर 10,
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: नए आइडियाज और नए लोग आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकते हैं। सो ओपन योर माइंड एंड वेलकम एवरीवन। लकी नंबर नंबर 11,
1: पाइसेस मीन राशि।
0: लास्ट, अपने दिल की आवाज सुनिएगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या मेडिटेशन से सुकून मिलेगा आपको। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे पीसफुल। लकी नंबर नंबर 12,
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: North, South, East or West. Tune into the very best. Radio Musti. You're not-

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार स्मैरा के साथ। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार राधा। पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरीज पीपीएस प्रणाली फिर से स्थापित की जा सकती है। कल नए जूनियर मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस मुद्दे पर प्रेस के सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वेरोनिक लुगोविन ने कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री की हैसियत से इस्तीफा देने का फैसला लिया क्योंकि उनके पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के चलते उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि राष्ट्रसभा के सामने प्रदर्शन करना खासतौर पर एक मंगलवार के दिन गैर कानूनन है। फिर भी उन्होंने चार व्यक्ति समझकर ये प्रदर्शन होने दिया लेकिन इन लोगों ने इस इजाज़त का गलत फ़ायदा उठाया। मालिना चिनीबास के सिटिंग को लेकर डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान उसने एक गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी भी की है। आज राष्ट्रसभा के एजेंडे में दो अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली परहत पर वेटलैंड्स बिल की पेशकश और राष्ट्रसभा में खेल मवेशियों के इस्तेमाल करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन शामिल हैं। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की जा रही है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका ये बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन अब तक ईरान के विदेश मंत्री ने वाशिंगटन के साथ बातचीत करने के दावे को झुठलाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रामजीत लेन बालिसो रोजबेल में 69 साल की 69 years old श्रीमती सरोज सिकोरी। श्रीमती सरोज सिकोरी पैदाइशी नाम बसोवन जो नीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके पति सुखदेव सिकोरी के घर रामजीत लेन बालिसो रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिशानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे @1 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चाहे आप शॉप में काम क्यों ना कर रहे हो, ऑफिस में काम क्यों ना कर रहे हो, या फिर बस यू ही गानों का साथ है, आपको पसंद ही है। एक छोटे से ब्रेक, देन विल बी बैक विद अनदर वर्जन ऑफ आजकल तेरी मेरी प्यार की चर्चे। Coming up is मेरे सामने वाली खिड़की में कोई ऐसा गीत का कुछ मैशअप सॉन्ग्स आपके लिए। इस सेकंड आवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। मैं मनीष मां,
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: शादी की खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा, अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए, आप तोहर अप्लीकेशन कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा। सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जो सच्चाई में मायना रखेला। जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा, सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
3: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est na saison ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir 9 août, depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Buklima, La Flora.
4: शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
0: RM2
2: Radio Mustang.

दिस इज द वैलेंटाइंस मैशअप रू अनप्लग वर्जन. लेडीज एंड जेंटलमैन, 10:30 बज रहे हैं अभी के लिए. द नेक्स्ट वन स्पेशली डेडिकेटिंग इन टू राजश्री एंड बाबुल फैमिली एंड नॉट टू फॉरगेट होजी सॉलिट्यूड के सभी स्टाफ के लिए. बंको हर्ष के साथ टू ईच एंड एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू आरएम टू रेडियो मस्ती. काम के साथ साथ हमारे साथ क्या बात है, हियर वी गो फॉर फैशन टिप्स.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
3: चल लीजिए, अगर आप हमारे साथ पूछे तो फैशन का मतलब सिंपल है, सिंपल करना और सिंपल कपड़े पहनना और मुस्कुराहट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ यूं ही बस कपड़ों को कैरी करना, यही हमारा नाम है फैशन मेरे लिए। वैसे अगर आप सिंपल आउटफिट पहनना पसंद करते हैं तो उसे स्टाइलिश भी बना सकते हो, बड़ा ही आसान है। तरीका है एक्सेसरीज का सही इस्तेमाल। Yes, एक एलिगेंट दुपट्टा, मैचिंग हैंडबैग और कंफर्टेबल फुटवेयर आपके पूरे लुक को भी इंस्टेंटली अपग्रेड कर देता है। याद रखिए, फैशन सिर्फ नए कपड़ों का नहीं, जैसे कि हमने कहा, कॉन्फिडेंस और एक मुस्कुराहट के साथ कैरी करना, यही फैशन का नाम है। स्टे स्टाइलिश, स्टे कंफर्टेबल विद आरएम2 रेडियो मस्ती।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरि फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: You're listening to Musty Mornings.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
2: Stay tuned, stay musty. Radio

सीक्रेट ऑफ द मूवी हैप्पी एंडिंग फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल आप सभी के लिए 5491294 पर, और जीती हमारे साथ 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थालिया द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LICS फ्रॉम द 12th ऑफ ऑगस्ट 2026 टू द 16th of August 2026 at SBI CCPIS from 10 a.m. till 9 p.m. तो चलिए बताइएगा कि वहाँ पर तो इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल तो होना ही है और एंटरटेनमेंट शोज तो है ही, क्या वहाँ पर आपके लिए आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैजिक शोज होने वाला है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। विल देयर बी एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल द मैजिक शोज, हाँ या ना में जवाब दीजिए ऑन 5491294।

hope you're liking the selection. Bandhu 2.0 for you, Cocktail 2 movie se liya gaya ye gana. Waise thodi der pehle humne pucha tha sawal, for you to be able to win 4 entry tickets and 1 food coupon offered to you by Jane's Little India Shahi Thali at the Utsav India Mersha Shopping Carnival, powered by SBI and LIC, as from the 12th August till the 16th of August 2026 at SBI CCPI, as from 10 a.m. till 9 p.m. Waise sawal tha वहाँ पर मैजिक शोज होने वाले हैं, हाँ या ना में जवाब देना था. एंड द राइट आंसर इज हाँ, ऑफ कोर्स. एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैनवास शो, बॉलीवुड डोनेशन कैंप, फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय द इवेंट वर्क्स लिमिटेड. एंड हमारे साथ है द विनर जो बने हैं आज हमारे बीच, नवीब मगन जो रहते हैं काची में. लिटे कंग्रेचुलेशन. Thank you so much for participating. जी हाँ, आप जीते हैं 4 entry tickets and 1 food coupon. Well, the game is powered by Rajasthan Works Limited.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, din ki 11 baje hai. सुनते हैं फिर से संक्षिप्त समाचार आपके साथ. सुमेरा नमस्कार आपको.
4: नमस्कार रादाब. राष्ट्रसभा के कार्य दिन के 11:30 बजे से शुरू हो रहे हैं. विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित रहेगा. पिछले 31 जुलाई को मिस्टर जी और होनरेबल वीएलजी के घर की तलाशी के सिलसिले में जो लोगों को जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या क्या जब्त किया गया, वे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ड्रग तस्करी से प्राप्त पैसों के मामले में संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में पूछताछ कर रहा है या नहीं, और क्या अटोर्नी जनरल दफ्तर ने रेन्यून टापू से कानूनी मदद की मांग की है या नहीं. राष्ट्रसभा के कार्यों के दौरान वेटलैंड्स की हिफाजत एजेंडा में शामिल रहेगी. कृषि उद्योग मंत्री पहली पहर पर वेटलैंड्स बिल को पेश करेंगे. इस विधेयक का मकसद सरकारी और निजी दोनों तरह की जमीनों पर मौजूद वेटलैंड्स के संरक्षण और बहाली के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार करना है. बिल के तहत एक नेशनल वेटलैंड्स कमेटी कायम करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा वेटलैंड्स के आसपास बफर जोन्स बनाए जाएंगे और इन सुरक्षित इलाकों में किसी भी तरह की गतिविधि या निर्माण का काम शुरू करने से पहले परमिट लेना लाजमी होगा. दूसरा अहम मुद्दा राष्ट्रसभा में क्रियोल मॉरिशिया को शामिल करने का है, जिसके लिए ये स्टीयरिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा, जिसका गठन बहुत जल्द किया जाएगा. पानी के रिजर्व घटते जा रहे हैं. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने फिर से अपनी वितरण योजना पर गौर किया. आते सोमवार से नए कदम लागू किए जाएंगे. पूरे देश में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. बुधवार से जल आपूर्ति को 2 घंटों से कम करने का फैसला लिया गया. 10 अगस्त से नए कदम लागू किए जाएंगे. सिर्फ सब्जियों के खेतों में सिंचाई की जा सकेगी. कौवाश स्थलों को पीने का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और उच्च दबाव वाली मशीनों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा तथा नल पानी से स्विमिंग पूल को भरने की अनुमति भी नहीं होगी. और विदेश में पूर्वी एशिया में गर्मी बहुत शदीद होती जा रही है. कुछ जगहों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है. दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य पूर्वी एशियाई देशों में स्थिति बहुत ही गंभीर है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. बनवेन कोटे मिलिटिया में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड शेख बीबी आबेदा जानी पैदाइशी नाम जानी जो फिरोजा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं. जनाजा आज साढ़े बारह बजे इनके घर बनवेन कोचे मिलितिया से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए इत्तेफाक मस्जिद कोचे मिलितिया और फिर दफनाने के लिए आलमा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM. शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है.
0: You're listening to Musti Mornings. Stay tuned. Stay Musti. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए वेलकम दिस लास्ट आवर ऑफ योर मस्ती मॉर्निंग. थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के गाने आपके लिए, बस आप सभी के नाम करना चाहते हैं सारी की सारी गाने. इतने सारे मैसेजेस हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग हियर लेडीज एंड जेंटलमैन. तो आई गेट हियर अनदर सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी बरसात, आपके दिल को छू ही लेगा. वैसे ठंडी ठंडी मौसम में एक चिस्की चाय. टेक इट ईजी ओके. इट्स लंच टाइम. नो चाय नो

0: कॉफी शुड नॉट बी लाइक दिस, यू हैव टू ईट प्रॉपरली ऑन टाइम. ये चाय वाय की कॉफी और ये जो सिलसिला है ना, बाद में रख लो. ओके, एंड आफ्टर योर मील यू कैन हैव अ शॉर्ट एंड स्वीट कॉफी. ये हो जाएगा आपके दिन को और भी, आपके मूड को भी और भी बरकरार रख देगा. ओके, एंड आई गेट हियर द नेक्स्ट सॉन्ग इज प्यारा आया फॉर यू एंड देन ग्रावी सावरिया कमिंग अप. आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ. हैव अ वंडरफुल डे आउट देयर. 11:10 हुए हैं.
1: रेडियो मस्ती.
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं. हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है. डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस. कोरी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन. फोन नंबर 5799-3782. हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी.
3: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est na 16 ans ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir du 9 août, depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Beau Climat, La Flora.
1: RM2 Radio Musti.

0: of your favorite songs playing on RM2 Radio Mast. It's जुदाई जुदाई ना हरिहरन के आवाज में और रुपसेगा यज्ञिक भी निभाते इस गाने को. ऐसे अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी कमिंग ऑफ कोर्स विद योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस. ऐसे क्यों ना पढ़ लेते अभी राइट नाउ राइट अवे. हेलो जी, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर द लवली सॉन्ग. मे आई प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग शार्प इट मूवी से फॉर यू. हैव अ गुड डे मनीष मान जी. हाय यली शाम ऑफ सुरीनाम की तरफ से मैसेज आया है यहाँ पर. ऑल द बेस्ट गुज आउट टू समारा जो कि लव हग्स एंड ब्लेसिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल मैसेजेस हियर. हेलो नमस्कार जी, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माई फ्रेंड रेबेका, उनका आज जन्मदिन है. थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे. एंड यहाँ पर सायरा बानो इज वर्किंग राइट नाउ, सो आपको बोको हर्ष लेते हैं. छोटा सा ब्रेक.
1: RM2 Radio Musti.

0: दिल में जो बात है कह दो, 11:55 होने को है। अब जो रेहरम टू रेडियो मस्सी के साथ अभी के लिए मनीषमा को इजाजत दीजिए। आफ्टरनून को आप एंजॉय कर पाएंगे ब्यूटीफुल सॉन्ग सिलेक्शंस के साथ। बारिश लेकर दो बस पुराने गाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेते अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक एंड द लास्ट सॉन्ग फॉर दिस आवर चल पड़ा आप सभी के नाम।
1: RM2
2: Radio Musty.
3: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrées directement chez toi grâce à Deliveroo et Oda Manzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, mais commandé, nous amener. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger.

0: Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घड़ी मिलाते चलिए दिन के ठीक 12 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार आपको.
4: नमस्कार आदाब. राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का सत्र फिलहाल चल रहा है और जो प्रधानमंत्री को संबोधित हैं पिछले 31 जुलाई को मिस्टर जी पर और ऑनरेबल वीएलजी के घर की तलाशी के सिलसिले में जूली जोंगा जानना चाहते थे कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या क्या जब्त किया गया. वे ये भी जानना चाहते थे कि क्या फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ड्रग तस्करी से प्राप्त पैसों के मामले में संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में पूछताछ कर रहा है या नहीं और क्या अटॉर्नी जनरल दफ्तर ने रीडन टापू से कानूनी मदद की मांग की है या नहीं. अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 26 जुलाई 2026 को खबर मिली थी कि दो व्यक्ति एक स्पीड बोट से रीनन टापू से आ रहे थे. 10 बड़ी काली थैलियों को जब्त किया गया. इनमें गांजा था जिसकी लागत 233 मिलियन रुपए से ज़्यादा की है. फौरन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और पुलिस की दूसरी इकाइयों के अफसरों को तैनात किया गया. सभी जांच और प्रारंभिक सबूतों के आधार पर मिस्टर जीजी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनका नाम उर्शस और रीनन टापू के बीच ड्रग तस्करी में आया. एफसीसी उनकी सभी संपत्तियों के बारे में पूछताछ कर रहा है और उनकी पत्नी मिसिज वीएलजी के तमाम जायदाद को लेकर भी. प्रधानमंत्री ने कहा कि मौसम दुलामों के खिलाफ उनकी सरकार कभी दया नहीं दिखाएगी और किसी भी तरह का कवरअप भी नहीं करेगी. और आज राष्ट्रसभा के कार्यों के दौरान वेटलैंड्स की हिफाजत एजेंडा में शामिल रहेगी. कृषि उद्योग खाद्य सुरक्षा एवं ब्लू इकोनॉमी मंत्री पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल को पेश करेंगे. इस विधेयक का मकसद सरकारी और निजी दोनों तरह की जमीनों पर मौजूद वेटलैंड्स के संरक्षण और बहाली के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार करना है. बिल के तहत एक नेशनल वेटलैंड्स कमेटी कायम करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा वेटलैंड्स के आसपास बफर जोन्स बनाए जाएंगे और इन सुरक्षित इलाकों में किसी भी तरह की गतिविधि या निर्माण का काम शुरू करने से पहले परमिट लेना लाजमी होगा. दूसरा अहम मुद्दा राष्ट्रसभा में क्रियोल मॉरिशियन का इस्तेमाल होगा. इस सिलसिले में एक मोशन पेश किया जाएगा जिसके जरिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन किया जाएगा. ये समिति संबंधित पक्षों की बात सुनेगी, जरूरी दस्तावेजों का अध्ययन करेगी और 12 मार्च 2026 को जारी स्टीयरिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा लेगी. कमेटी जरूरत पड़ने पर माहिर सलाहकारों की मदद भी ले सकेगी. इसके बाद वो राष्ट्रसभा की बहस और अन्य संसदीय कार्यों में ख्याल मुहिसिया के इस्तेमाल पर अपनी सिफारिशें भी पेश करेगी. विदेश की खबरों में पूर्वी एशिया में शदीद गर्मी का मसला है. जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य पूर्वी एशियाई मुल्कों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हैं. अभी काफ़ी नुकसानात हुए हैं क्योंकि गर्मी की वजह से आम जिंदगी तहस नहस है. जानवरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. बनवेन कौचे मिलितिया में 78 साल की 78 years old मोहतरमा शेख बीबी आबेदा जानी. मोहतरमा शेख बीबी आबेदा जानी जो फिरोजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं. जनाजा आज 12:30 बजे इनके घर बनवेन कौचे मिलितिया से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए इत्तेफाक मस्जिद कौचे मिलितिया और फिर दफनाने के लिए आलमा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM. पिचिपा के रोड मोताई ब्लॉश में 70 साल के 70 years old श्री दयानंद कतोना जो अनिल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दो बजे इनके बेटे आशिफ कतोना के घर पिचिपा के रोड मोताई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 2 PM. मोगिस रोड मेबर्ग में 58 साल के 58 years old श्री देवेन पायन जो जेसन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी

0: गंदरावती पायन के घर मोहिस रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोंबो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty. Radio Musty.

0: गाना भी एकदम बढ़िया है, है मीत ना मिला रे मन का, हम तो कहेंगे मीत नीतू।
1: रेट्रो रिदम
0: विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिन के 12:11 हो रही है। कैसे हैं माय डियर लिसनर्स, ठीक ठाक? दैट्स अ रियली होप, वेल दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू कि आपके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं ऑन 5499-1294। सो प्यार भरे नमस्कार प्रणाम स्वीकारे। आज है 4 अगस्त, मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, लेकिन आपके साथ द ग्रेट किशोर कुमार भी आज उनका बर्थडे है, और ऐसे महान कलाकार को हम कभी भुलाए से भी भूल नहीं सकते हैं। अनगिनत गाने उन्होंने गाए हैं आज, और उनका जन्म हुआ था डेफिनेटली 1929 को, और 13 अक्टूबर 1987 को वो देहांत हो गए, उनका देहांत हो गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स जैसे कि रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, मन्ना डे साहब, इनके साथ साथ इन्होंने अनगिनत गाने गाए, कितने सारे अवार्ड्स जीते। बस साथ निभाते रहिएगा, और भी मस्त गाने होंगे, और भी गाने होंगे बाय द वे ऑन सैकत नफ नफ दोस्त नफ कात।
2: RM2
3: रेडियो मस्ती।
4: Tous nous sommes à la MRE. La MRE organise

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: दीवाना तो यही कहेगा कि गाने सुनिए और मैसेजेस भेजते रहें ऑन 5499129 फॉर हैप्पी बर्थडे अनीश शाह 18 इयर्स टुडे एंड विशेस फ्रॉम तनवीर तेजल रायना साथ में है अनिष्ठा तरश विदिशा बानी शाह वर्षा और सब परिवार हाय नीतू गुड आफ्टरनून जीना जोसुगी प्रणाम जी सभी के नाम कल्याणी फ्रॉम कॉन्टुगल निर्मला फ्लाक्स से कोई भी गाना आपने कहा अपने लिए परिवार के नाम और अभी बरसात हो रही है तो डेफिनेटली बरसात वाला गाना चलाएंगे सुया बिहारी जी पतिलाल देव कुंगुमा से एंड बस आपके पूरे परिवार के नाम रवि साहब का एक गाना हो जाए फ्रॉम द मूवी आरजू ए फूलों की रानी बहारों की मलका आय हाय हाय

0: देखा तो तुझे तो ऐसा लगा कि बस ये गाने एवरग्रीन हैं और हमेशा रहेंगे। 12:31 होने वाले हैं, बस आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच ऑन 5499-1294। दैट वॉज कोयला, ऑफकोर्स रिमेम्बरिंग द ग्रेट किशोर कुमार तो नहीं थे, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुमार सानू की आवाज़ थी उसमें, एंड अलका याग्निक। 5499-1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस। कैसे हैं आप जलेश एंड श्याम फैमिली? हेलो जी, गुड आफ्टरनून। एंड श्याम देवीचंद फैमिली यहाँ पर हैं, आकाश एंड मनसुख फैमिली एज यूजुअल, थैंक यू सो मच माय डियर, गुड आफ्टरनून। सनीचर दावेदस परिवार बॉम्बू से हैं, धनेश्वर जी, सुनीता जी आपकी पत्नी, पोतियाँ हैं हंस, विबियाना, भाविका, मीना ऋषि, साथ में तहान। चले किशोर कुमार की बात चल पड़ी है।
1: रेट्रो रिदम।
0: तो जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे महान प्लेबैक सिंगर्स का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम जो दिल और जुबां पर आता है वो है किशोर कुमार। असली नाम आभास कुमार गांगुली, जैसे कि हमने कहा 4 अगस्त 1929 को उनका जन्म मध्य प्रदेश के खांडवा शहर में हुआ था। और ना सिर्फ एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर रहे बल्कि एक बेहतरीन एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड सो ऑन। ही वाज सो वर्सटाइल और उन्होंने इतने अनगिनत गाने गाए, ओ माय गॉड, बस 2 घंटे बीत जाएंगे, पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन उनके गाने कभी ख़त्म होंगे नहीं। और

उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं, बी जुवच लता जी या फिर इवन रफ़ी साहब के साथ, मन्ना डे साहब के साथ गाने तो हम आपको सुनाएंगे ज़रूर, लेकिन आपको अगर कोई उनका गाना फेवरेट पसंद हो तो डू लेट मी नो ऑन 5499-1294, क्या पता शायद हम भी वो चलाने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि अभी मौसम काफ़ी बेईमान है, बारिश हो रही है, तो ये वाला अब तो बनता ही है।

0: What a lovely gana, वो भी हरी हरन की आवाज में, the 90s of course, घूंघट फिल्म से लिया गया.
1: Retro rhythm.
0: पौने एक बज चुका है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड मैसेजेस. और कृष्णा बेवी मुगल से अपने गाने की फरमाइश की है, कौन सा गाना, चलिए देखते हैं. अभी आबाद फैमिली कैसे हैं? लवली बट ग्लूमिंग वेदर, और कई बारिश तो हो नहीं रही है ना. डू लेट मी नो बाय द वे ऑन सैकात नफ नफ दोज नफ काट. गुड आफ्टरनून, आप है कौन? ललिता जीतन फैमिली. शैला फ्रॉम गुडलैंड, आपका बेटा है श्रीकांत, बेटी है, बल्कि बहू तो बेटी ही है येशना. ग्रांड सॉन है श्रियाल, साथ में

0: कुहल, श्रीयेश, साइना, श्रीना, शालिनी और सोनाली, लवली नेम, और आपके पूरे परिवार के नाम। लवली गाना चला रहे, थैंक यू सो मच सिल्विया, कृषि, शिवसरन परिवार, शिष्टान, शिनी, सिल्विया, यूवी, रीमा, जनिता एंड आपके लिए जना फ्रॉम बुलेगोज फ्लैक का कहते हैं आप यहाँ पर पूरे परिवार के नाम। वल किशोर कुमार, उनके बारे में जितनी बातें करें उतना ही कम। गायकी की दुनिया में उन्होंने वो मकाम हासिल किया जिसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। हजारों गीत हिंदी के साथ बंगाली, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, असामीज एंड सो ऑन उनमें भी गाए हैं, और उनकी आवाज में जो रोमांस, दर्द, मस्ती, हर कुछ आप महसूस कर सकती हैं, जिंदा दिली जैसे कहते हैं, और उनके मशहूर योडलिंग स्टाइल उनकी पहचान बन गई। बीट राजेश खन्ना, देवानंद, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और सनी देओल तक के लिए उन्होंने गाया, जितेंद्र और भी ऑलमोस्ट एवरी एक्टर्स के लिए उन्होंने गाए हैं अपने जमाने 70s एंड 80s में, और जैसे सुपरस्टार्स की स्क्रीन इमेज को उनकी आवाज ने और भी यादगार बना दी थी। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज संगीत जो कार रहे, संगीतकार रहे लाइक एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इवन शंकर जयकिशन, बप्पी लहरी, और गाने तो उनके आपको बहुत ही पसंद है। ये वाला हो जाए उनके सभी फैंस के नाम।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है,

0: कुछ ऐसे गाने होते हैं ना, कुछ ऐसे लव्स होते हैं जो छू बस दिल को ही छू जाते हैं, सीधे असर कर जाते हैं। और प्रीति को ये प्यारी सी फिल्मी गजल अच्छी लगी, थैंक यू माय डियर।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: देखते ही देखते ही एक घंटा कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। 12:56 एक बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। गुड आफ्टरनून सीता गीता भोलू राम परिवार शतुबिना गस्या अब्दुल एंड सारा बानू। गुड आफ्टरनून टू यू टू।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे आशिता नमस्कार
1: नमस्कार नीतू शाह श्रोताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता की प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित था जो लिजोंगा ने एक महिला सांसद के पैतृक आवास पर की गई छापेमारी के बारे में जानकारी मांगी उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या के साथ साथ जब्त की गई वस्तुओं और वाहनों की जानकारी चाही विपक्ष नेता ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम से ये भी जानना चाहा कि क्या इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की कोई जांच शुरू की गई है अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि इस मामले में कोई भी कवर अप नहीं किया गया है

0: और नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद वेरोनिक लेगोविन इस जांच के सिलसिले में अपनी इच्छा से आजसू के सामने पेश हुई थी और उन्हें इस बुधवार को फिर से आजसू में उपस्थित होना है। जूनियर मंत्री वेरोनिक लेगोविन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उनके जूनियर मंत्री पद से इस्तीफा देने के निर्णय को स्वीकार कर लिया है। ये फैसला उनके पति पर लगे मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के बाद लिया गया है। वेरोनिक लेगोविन अब तक कला एवं संस्कृति मंत्रालय में जूनियर मंत्री के रूप में कार्यरत थी। प्रधानमंत्री के अनुसार संभावित जन धारणा और उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को देखते हुए उनसे पद छोड़ने का अनुरोध किया गया। अन्य खबरों में राष्ट्रसभा में ही वेटलैंड्स की सुरक्षा का मुद्दा चर्चा का विषय होगा क्योंकि वेटलैंड्स बिल का पहली पढ़त में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी और निजी दोनों जमीनों पर इन इकोसिस्टम की सुरक्षा संरक्षण और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना है। रेजिडेंस एक अल्टरनेटिव की दावित सुवाज के अनुसार वेटलैंड्स बिल पर होने वाली बहस को 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं के इर्द गिर्द केंद्रित होगा। उनके अनुसार जब किसी निर्माण परियोजना का संबंध किसी वेटलैंड से हो तो केवल इमारत का ही मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसके आसपास के पूरे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आंकलन होना चाहिए। दावित सुवाज ने स्पष्ट किया कि बाढ़ से बचने के लिए गांवों के आसपास वेटलैंड्स का निर्माण किया जाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में इस वर्ष जंगल की आग का मौसम असाधारण रूप से गंभीर हो गया है। वॉशिंगटन का स्पोकन शहर अब युद्ध क्षेत्र जैसा दिखाई दे रहा है। लगभग 2,30,000 आबादी वाले इस शहर के कई इलाकों को तबाह करने वाली तीनों आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। शनिवार को यहां आपातकाल घोषित किया गया था। आग की लपटों ने पूरे के पूरे मोहल्लों को अपनी चपेट में ले लिया है और 65,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Retro Rhythm RM2

0: आपको छोड़कर कहीं गए भी नहीं थी. उदित नारायण की आवाज में चलिए दैट वाज प्यार किया तो डरना क्या, एकदम डट से कह दीजिए आई लव यू जो टाइम जो भी हो आप कहना चाहो दिल से कहो. 1:00 ऑलमोस्ट 20 मिनट होने वाले हैं. वेलकम बैक और 2 तक आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294. इट्स योर रेट्रो रिदम.
1: RM2 Radio Musti. Paré pour plus grand festival shopping, Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point à lieu dans SBI Sissipai tous les jours, à partir de 12 août jusqu'à 16 août, de 10h à 9h. Point à shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, du 12 au 16 août à SBI Sissipai, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
2: RM2 Radio Musti.

0: जितनी मस्ती, जितनी जो मधुरता रही किशोर कुमार की आवाज़ में, उतनी ही रफ़ी साहब की आवाज़, वो लोग जानते थे कि कैसे कन्वे करना चाहिए जो इमोशंस हैं एक्टर्स के लिए।
1: रेट्रो रिदम,
0: भले ही ये जो लेजेंडरी आवाजें हैं बीर लता जी, किशोर कुमार, रफी साहब, मुकेश, उन्होंने एक्टर्स के लिए गाए होंगे, लेकिन छुए तो दिल हजारों लिसनर्स के जो आम फनकार हैं, है ना। 1:25 वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट द ग्रेट किशोर कुमार, आज उनका जन्मदिन है। काश और भी होते तो और भी गाने उनकी आवाज में हम लोग सुन पाते। और अवार्ड्स के बारे में क्या कहना, जी हाँ, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स वो जीते और लंबे समय तक एक

0: गा रहे हैं ना, 1:25 जो वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट द ग्रेट किशोर कुमार, आज उनका जन्मदिन है। काश और भी होते तो और भी गाने उनकी आवाज़ में हम लोग सुन पाते। और अवार्ड्स के बारे में क्या कहना, जी हाँ, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स वो जीते और लंबे समय तक एक रिकॉर्ड भी रहा। और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने यानी कि लता मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया। बाद में किशोर कुमार अवार्ड की भी स्थापना की गई। क्या बात है, जो हिंदी सिनेमा में योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहें, इतने चुलबुले थे और जिंदगी भी काफी चर्चित रही उनमें, यानी कि 4 शादियां, रूमा, गुहा, ठाकुरता, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंदवरकर। मधुबाला के कहीं यानी कि उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के दौरान उन्होंने उनका जो रिश्ता पूरी निष्ठा से निभाया, लेकिन किशोर कुमार ने अपनी अलग सोच, मज़ेदार हरकतों और अनोखे स्वभाव के लिए भी वे पहचाने गए। कभी रिकॉर्डिंग के दौरान मजाक करना, कभी प्रोड्यूसर्स के साथ अपनी शर्तों पर काम करना और कभी अचानक गायब ही हो जाना सीन रिकॉर्ड करते समय, ये सब उनके दिलचस्प व्यक्तित्व का हिस्सा भी रहा। और कई ऐसे गाने उन्होंने गाए, लाइक इम्तिहान हो गए, वो ऐसे लेटे हुए गा रहे थे और आशा जी आते, जब उनका पाउच आता है लो, जब आशा जी आती है तो वो भी ऐसे ही। दैट वॉज किशोर कुमार, एकदम दिल फेंक इंसान थे। और एक रोचक बात भी ये है कि किशोर कुमार ने किसी भी तरह की फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग, म्यूजिक ट्रेनिंग के बिना ही संगीत की दुनिया के शिखर पर पहुंच गए। उनका मानना था कि गाना सिर्फ सुरों का नहीं बल्कि दिल की भावनाओं का भी सफर होना चाहिए। शायद दैट्स व्हाई उनकी आवाज़ हर उम्र के श्रोता जो है लिसनर के साथ उनके दिल को छू लेती थी। तो चलिए एक और रोमांटिक गाना हो जाए, इस बार आशा जी के साथ, दिल्ली का ठग फिल्म से लिया गया ये गाना स्पेशली आपके नाम, मिस्टर गायता एंड मिसेस फ्रांसवाज सेलिब्रेटिंग योर 50th बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी आई मीन। तो समांता लेतिसिया मांदा आपके पूरे परिवार एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आरती जी गीतों की बारिश में भीग रही है, थैंक यू। और मन है ख्वाया से, सुरेखा जी है कात्र कुकु से, एंड बहने हैं शोभा, अनुराधा, लक्ष्मी, खास आपके लिए अनिता जी, फ्लिक फ्लॉक फ्लिक ऑन फ्लॉक से।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: दिन तो हर रोज ढलता है, रात भी आ जाती है, फिर से सुबह होती है, फिर से दिन चढ़ता है, फिर से आ जाते हैं वापस आपके साथ 156. बस अभी के लिए जाने का टाइम आ गया है. मिलेंगे आपसे अब थर्सडे आफ्टरनून को दिन के 12 से 2 के बीच. काफ़ी मैसेजेस अभी आ रहे हैं, सो सॉरी, लेकिन आपका प्यार मिला. मिष्टी हिमाक्षी आशीष एंड रेशमा राम की सुन फैमिली के नाम आपके लिए भी है. कौन इंदिरा मोता ब्लॉश से सभी परिवार के नाम आपके लिए भी जना एंड बिना संभू पासका तो बोन से. तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी नेक्स्ट टाइम आए आपकी कोशिश यानी कि आपकी फरमाइशों को पूरी करेंगे. हमारे बाद परी के साथ बॉम्बे टॉकीज. स्टे सेफ, बाय बाय.

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 2 baje hai. एक बार फिर सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। इस बार आपके साथ विधिमा। नमस्कार।
6: नमस्कार नीतूषा। सभी सुनने वालों को नमस्कार।

0: हम मौत के सौदागरों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समझौता नहीं करेंगे और कोई कवर अप नहीं की जाएगी। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कही। वे विपक्ष नेता जूली शोंगो के पीएनक्यू का जवाब दे रहे थे। जोरेनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे के कथित तस्करी के मामले में पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेरोनिक लो गोविन के पति गुलशन गोविन की गिरफ्तारी पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि वेरोनिक लो गोविन के वाहन की फोरेंसिक पुलिस द्वारा जांच की गई है, उसमें कैनाबिस का एक बीज और उसके निशान मिले हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि पूर्व जूनियर मंत्री 3 बार रेनन गई थी, जिनमें से 2 बार वो अपने पति के साथ थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने पद के कारण वीआईपी लाउंज तक उनकी पहुंच सामान्य बात थी। अंत में वेरोनिक लो गोविन अपनी इच्छा से आदसू के सामने पेश हुई और बुधवार को अपने कानूनी प्रतिनिधि के साथ उन्हें वहां फिर से जाना है। दूसरी ओर एफसीसी ने ये पता लगाने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जांच शुरू कर दी है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराध भी किए गए हैं। 8 साल की घोषणा के बाद वेटलैंड्स बिल को आखिरकार इस मंगलवार को राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। इस कानून का उद्देश्य वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिन्हें अब तक एनवायरनमेंट एक्ट के तहत केवल अप्रत्यक्ष सुरक्षा ही प्राप्त थी। अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भी एक कानून तैयार किया जा रहा है। मॉरिशस में नैतिक भर्ती को बढ़ावा देना और विदेशी श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने इस मंगलवार की सुबह पोर्टलुई में 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मिक्सा और आरिम के साथ किए गए हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य नौकरी बाजार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हुए अधिक जिम्मेदार श्रम प्रवासन को बढ़ावा देना है। और विदेश में सोमवार रात को मॉस्को के पास एक गोदाम पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। रूस ने भी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर हमले किए, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Oldies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है और दैट वाज अ डिवाइन स्टार्ट हमारे इस शो के लिए. बॉम्बे टॉकीज लेकर आए हैं आपके लिए. एवरी आफ्टरनून यानी कि मंडे टू फ्राइडे 2 से लेकर 4 बजे तक होता है हमारा ये प्रोग्राम. अब तो आप जानती हैं कि बी टाउन की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक. और मैं हूं परी और आप तो हमारा साथ देते ही हैं मॉर्निंग टू नाइट. सो फॉर नाउ आपकी इस आफ्टरनून में तड़का लगाने वाले हैं हम बॉलीवुड का विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स एंड कुछ गाने ऐसे जो आपको अच्छा फील करवाएंगे फॉर दिस आफ्टरनून. सो आई डू होप दैट आफ्टर मंडे ब्लूज आज का जो ट्यूजडे है वो काफी कूल एंड सूदिंग है. और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छे से बीत रहा है. अगर कुछ ऊंच नीच हो भी रही है, अगर कुछ ऊपर नीचे इमोशंस भी हो रहे हैं, नॉट टू वरी, वी आर हियर. हम आपका ख्याल रखेंगे गानों के साथ, आपके मूड को सेट रखने की कोशिश करेंगे. और अगर आप भी साथ दे रहे हैं सो ऑल यू हैव टू डू इज आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपका प्यार कर रही हूं मैं आपका इंतजार ऑन 5499-1294.
3: More music in the mix.
0: Aaj azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और शो शुरू करते ही आपके लिए एक इंटरेस्टिंग गेम जहां पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम. सवाल बस सिंपल सा, ये जो गाना चल रहा है ज्योति नूरन रिबेल की आवाजें, आपको हमें बताना है ये जो गाना है कौन सी फिल्म से लिया गया है. भाई ये ऐसी फिल्म है जो काफी चर्चाओं में रही और सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस फिल्म ने. सो वेटिंग फॉर राइट आंसर्स 5499-1294 पर. लकी ड्रॉ के बाद अगर आप बनते हैं लकी विनर, जीत सकते हैं 4 entry tickets एंड 1 food coupon फॉर जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. देंगे और डिटेल्स थोड़ी ही देर में. अभी के लिए आपके सही जवाब 5499-1294 पर. गाना सुनिए, हमें बताइए गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है. आवाजें हैं ज्योति नूरन एंड रिबेल की. एंजॉय दिस वन. सही जवाब ऑन 5499-1294. ऑल द बेस्ट.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल यहां पर आपसे पूछा था सवाल मैं वारी जावा ये जो गाना है कौन सी फिल्म से लिया गया है एंड द राइट आंसर इज धुरंधर बहुत सारे लोगों ने दिया सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद नूतन गोपोल आप हेड शोले से बनती है लकी विनर सो कांग्रेचुलेशंस खेला आपने एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ साथ ही आपको बता दिए दर आपने जीते हैं 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जेंस लिटिल इंडिया शाही थाली जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट एसबीआई सीसी पार्क सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक साथ ही यहां पर होने वाला है बहुत कुछ इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शोज मैजिक शोज फैशन शोज लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन एंड स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का कानमा के शो होंगे ब्लड डोनेशन कैंप्स और फूड फेस्टिवल एज वेल ऑर्गेनाइज किया गया है इवेंट वर्क्स लिमिटेड के द्वारा और हमारी विनर नूतन गोपोल आपको कहेंगे कांग्रेचुलेशंस जीतने के मौके और भी मिलेंगे अभी के लिए लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती
0: आरएम2
1: रेडियो मस्ती

0: RM2
1: रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
0: RM2
1: Radio Mustang.

So well, that was a beautiful song, Arijit Singh, Nikita Gandhi ki awaazein, and ye gana tha hamare sabhi listeners ke naam jo hamare saath jude hue hain. Afternoon time, aur jahan kahin se bhi aapne tune in kiya hai, work from home, ghar se connected hain hamare saath, ya fir kaam par liya hai aapne tea break. That's your wonderful afternoon time, jahan par aap thoda sa me time bhi enjoy kar sakte hain, and you can enjoy some wonderful Bollywood updates jo hum aap tak pahunchate hain. Abhi ke liye to khabar yahi hai that Salman Khan ke fans besabri se intezar kar rahe hain unki upcoming film Matrubhumi ka. अभी तक तो कोई डेट डिसाइडेड नहीं है. वैसे ये फिल्म जो है वो बहुत पहले रिलीज होने वाली थी, यानी कि इसकी जो एक्चुअल डेट्स थी वो थी इन फरवरी, लेकिन पोस्टपोन होते होते अब दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डेट. अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसी फिल्म का एक खूबसूरत गाना फॉर ऑल द फैंस ऑफ सलमान खान एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. चलिए आपके लिए कुछ प्यारे गाने हम चला रहे हैं. आफ्टरनून टाइम है एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: तो गानों में शामिल होता हुआ ये गाना टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन लेकिन एक ट्विस्ट के साथ That's in the voices of Runa Leela and Bhupinder Singh, हमारे सभी listeners जो साथ दे रहे हैं। चलिए afternoon time को थोड़ा सा romantic बना रहे हैं। मैं हूँ परी आपके साथ। It's time for your Bombay talkies. Enjoy this one.
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक

0: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
1: 10 roupies, 50 roupies, 100 roupies, 200 roupies. Oui, Oufine, bien attendez. La Foifouille présente tous ce Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park. Ban milliers lotiques à prix foufou. Cosmétiques, meubles, textiles et plus encore, et n'indice tout. Parata l'occasion là. En famille, voisins, camarades, vinfen les tout. Nous pouvons attendre. La Foifouille Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park.
2: C'est la fête à la maison. La Foifouille.
3: RM2
4: Radio Musty.

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Masti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Masti.
1: Radio Masti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
6: Time check exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को नमस्कार. हम मौत के सौदागरों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समझौता नहीं करेंगे और कोई कवर अप नहीं की जाएगी. ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कही. वे विपक्ष नेता जूली जोंगा के पीएनक्यू का जवाब दे रहे थे. जोरेनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे के कथित तस्करी के मामले में पूर्व जूनियर मिनिस्टर विहोनिकुल गोविंद के पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी पर केंद्रित थी. प्रधानमंत्री ने बताया कि विहोनिकुल गोविंद के वाहन की फोरेंसिक पुलिस द्वारा जांच की गई है. उसमें कैनबिस का एक बीज और उसके निशान मिले हैं. नवंबर 2024 से इस वर्ष 29 जुलाई तक देश की जेलों में 579 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं. इनमें से 41 फ़ोन कैदियों के पास से बरामद किए गए. आज राज्यसभा में सांसद अदरियन जुवाल के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये आंकड़े साझा किए. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इनमें से कुछ फ़ोन का इस्तेमाल आपराधिक अपराध करने के लिए किया गया था. जेल परिसरों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 6 कदम लागू किए जाएंगे, जिसमें मिलगोज जेल में मोबाइल फ़ोन जामर सिस्टम की स्थापना भी शामिल है. प्रधानमंत्री को संबोधित प्रश्नों के सत्र में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की है कि सरकार पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरीज पीपीएस की व्यवस्था को बहाल करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है. इस बदलाव से जूनियर मिनिस्टर का पद समाप्त हो जाएगा. सांसद अदरियन जुवाल ने तब ये तर्क दिया कि एक जूनियर मिनिस्टर के विपरीत जो उस मंत्री पर निर्भर होता है जिसके साथ वो जुड़ा होता है, पीपीएस की विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं, विशेष रूप से किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति. हालांकि प्रधानमंत्री इस विचार से सहमत नहीं है. सांसद जोआना बेरांजे के एक सवाल के जवाब में

में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रसभा में क्रियोल मॉरिशियन के इस्तेमाल पर बनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले सिलेक्ट कमेटी के समक्ष पेश किया जाना होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस समिति की भूमिका के बारे में अधिक स्पष्टता आज देर शाम तक दी जाएगी। वैसे ये रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में स्पीकर को सौंप दी गई थी। 8 साल की घोषणा के बाद वेटलैंड्स बिल को आखिरकार इस मंगलवार को राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। इस कानून का उद्देश्य वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिन्हें अब तक एनवायरनमेंट एक्ट के तहत केवल अप्रत्यक्ष सुरक्षा ही प्राप्त थी। अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भी एक कानून तैयार किया जा रहा है। और विदेश में जंगल की भीषण आग के कारण उत्तर पश्चिमी अमरीकी राज्य वाशिंगटन के कुछ हिस्सों से लगभग 60,000 लोगों को सुरक्षित बाहर जाना पड़ा है, जिससे सैकड़ों इमारतें नष्ट हो गई और हजारों लोग बिजली से वंचित हो गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: फ्रेंड्स अभी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं और 3:10 हो गए हैं मैं हूं परी आपके साथ दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती आई डू होप यू आर एंजॉयिंग योर आफ्टरनून अभी के लिए बॉलीवुड की खबर एक्टर इमरान खान ने काफी वक्त से स्क्रीन से दूरी बनाकर रखी है मगर अब बतौर लीड एक्टर दमदार वापसी के लिए वो ऑल सेट और रेडी है और एक बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम से जुड़ी कुछ जानकारियां शेयर की हाल ही में एक इंटरव्यू में इमरान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में काफी कुछ बताया हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेरी फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम की शूटिंग जो है वो कंप्लीटली पूरी हो चुकी है ये फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन में है और इस साल के एंड तक ये फिल्म रिलीज होने की उम्मीद है और ये एक एडल्ट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो मेरे जीवन के मौजूदा हालात दर्शाती है मतलब लूजली बेस्ड ऑन हिज रियल लाइफ ऐसा है उनका कुछ कहना है और इमरान खान ने आखिरी बार साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म कट्टी बट्टी में बतौर लीड हीरो काम किया था अब ये सीधे फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम में लीड रोल प्ले करेंगे फिल्म के बारे में आगे एक्टर ने कहा कि मैं अभी अभी एक बेहद प्रतिभाशाली युवा एक्ट्रेस गुरफतेह परिजाद के साथ काम करने में मैं काफी खुश हूं उन्होंने कहा कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हुए उन्हें काफी अच्छा लगा और वो फिल्म से जुड़े कुछ खास जो फैक्ट्स है वो भी बता रहे थे और उन्होंने कहा कि ये फिल्म है काफी इंटरेस्टिंग है और यंग ओल्ड सभी जनरेशन जो है उनको ये फिल्म पसंद आने वाली है सो दैट्स अधूरे हम अधूरे तुम इस साल के एंड तक

रिलीज होने की उम्मीद है. सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द फैंस ऑफ इमरान खान. और ये तो हम जानते हैं कि एक दौर था जब वो एज अ चॉकलेट हीरो जाने जाते थे और लोगों को काफ़ी पसंद भी आते थे, लेकिन बॉलीवुड में उनका जो सफ़र है काफ़ी छोटा रहा, लेकिन ऑफकोर्स यादगार रहा. अब अपना कम बैक कर रहे हैं विथ हिज नेक्स्ट फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम. लेकिन दोस्तों, जब तक हम आपके साथ हैं, ना अधूरे आप हैं ना अधूरे हम हैं. आपका साथ हमारे लिए खास एंड स्पेशल. और अभी के लिए तो खबरें आप तक पहुंचा रही हैं. इमरान खान की बात हुई है तो चलिए उन्हीं के फिल्म का एक गाना आपके लिए हम लेकर आए हैं. फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ, गोरी तेरे प्यार में जो आजकल ये जो गाना है काफी चर्चाओं में है. ओरिजिनली संग बाय मीका सिंह, ममता कुलकर्णी एंड यस ममता शर्मा, नॉट कुलकर्णी, ममता शर्मा एंड मीका सिंह. और ये गाना आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. सो विशिंग यू अ लवली आफ्टरनून. And well friends, aapke messages, aapke dedications is our me on 5499-1294.

चलिए नए हो या फिर पुराने, लेकिन पुराने गाने भी आपके लिए विद अ ट्विस्ट हम लेकर आते हैं हमारे इस शो में जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज। फॉर नाउ दैट्स करण नवाजनी की आवाज और ये गाना आप सभी के नाम, दैट्स सात समंदर आपके लिए, तो मेरी मैं तेरा इसी फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए। एक बार फिर आया ये गाना, लेकिन ओरिजिनल इज ओरिजिनल। लेकिन चलिए थोड़ी सी यादों को ताजा करते हैं विद दिस वन फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। एंजॉय दिस वन।

0: Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: So that was Parampara Tandon, Mohit Chauhan ki awaazein from the film Assi, ek super romantic gana aap sabhi ke liye. It's 3:44 dosto aur chaliye baat karte hain Bollywood actor Aamir Khan aur Ashutosh Govarikar apni upcoming sports drama film Lalkara ki casting mein bada badlaav kar rahe hain. Farhan Akhtar ke is project se hatne ke baad ab actor Siddhant Gupta isme shamil ho gaye hain. Ek report ke mutabik Farhan Akhtar ne film se isiliye kinara kar liya kyunki iski shooting ka jo schedule है वो संगीतकार आर डी बर्मन पर बन रही बायोपिक की शूटिंग से टकरा रहा था यानी कि ये एक और फिल्म कर रहे हैं जो है आर डी बर्मन की बायोपिक और ये जो दोनों शेड्यूल थे वो मैच नहीं हो पा रहे थे अब ललकारा में फरहान अख्तर की जगह सिद्धांत गुप्ता अदाकारी करेंगे और सिद्धांत को सीरीज जुबली और फ्रीडम एट मिडनाइट में एक्टिंग के लिए काफ़ी तारीफ मिली है और उम्मीद है कि हाल के वर्षों की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में एक मानी जा रही यानी कि ये जो फिल्म है जो मानी जा रही है स्पोर्ट्स ड्रामा अब तक की इन इतने टाइम में जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी हैं उसमें ये मानी जा रही है सबसे बड़ी फिल्म और इसमें एक्टर आमिर खान के साथ एक अहम किरदार निभाना ये इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है सभी के लिए तो सिद्धांत गुप्ता की लॉटरी लग गई है कह सकते हैं फरहान अख्तर के इस प्रोजेक्ट से हटने के बाद फायदा हुआ है एक्टर सिद्धांत गुप्ता को और ये तो है कि भाई लो बजट फिल्मों में शायद इनको ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन अब जो ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो मानी जा रही है अब तक की एक सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसमें वो काम कर पाएंगे आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर के साथ सो ये उनके लिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा सो लेट्स वेट एंड वॉच की जो ललकारा फिल्म है वो लोगों को कितना पसंद आती है लेकिन अभी के लिए तो काफ़ी इंतज़ार करना है अभी तो बस कास्टिंग चल रही है उसके बाद ये फिल्म बनेगी और ये फिल्म कब रिलीज होगी आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार दोस्तों साथ दे रही हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती सो यू कैन ड्रॉप इन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में ऑन 5499-1294

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: And this is a heart-touching one for everyone जो शायद the family को miss कर रहे हैं, घर को miss कर रहे हैं. I know हमारे बहुत सारे listeners सात समुंदर पार से भी हमारे साथ connected रहते हैं. And this one truly touches the heart. ये गाना आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं on the waves of RM2 Radio Masti. That's your Bombay Talkies. मैं हूँ परी आपके साथ till 4 p.m.

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 4 PM.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार रिधिमा के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार. हम मौत के सौदागरों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समझौता नहीं करेंगे और कोई कवर अप नहीं की जाएगी. ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कही. वे विपक्ष नेता जोली शौगा के PNQ का जवाब दे रहे थे. जोरेनियन और मोशस के बीच 155

0: 7 किलो गांजे के कथित तस्करी के मामले में पूर्व जूनियर मंत्री वेहोनिकोलो गोविंद के पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी पर केंद्रित थी। जेल प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण मिलेंगे। मार्च 2027 तक इसके पास किसी भी अनधिकृत ड्रोन गतिविधि का पता लगाने और उसका मुकाबला करने के लिए एक नई एंटी ड्रोन प्रणाली होगी। प्रधानमंत्री ने आज पीएमक्यूटी के दौरान इस परियोजना का उल्लेख किया। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट मॉनिटोरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, जिसे जल्द ही बनाया जाएगा, के लिए एक उच्च योग्य पेशेवर के चयन को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। सरकारी नेता ने इसके अलावा रियल इस्टेट और टैक्स से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। मॉरिशस में नैतिक भर्ती को बढ़ावा देना और विदेशी श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने इस मंगलवार को पोर्ट लुई में 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन, मिक्सा और आगिम के साथ किए गए हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य नौकरी बाजार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हुए अधिक जिम्मेदार श्रम प्रवासन को बढ़ावा देना है। और विदेश में मोरक्को से स्पेन के स्वेटा में प्रवासियों के भारी आगमन के बाद यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने सीमा सुरक्षा के लिए संयुक्त कार्रवाई की मांग की है। इस बीच स्थिति पर चर्चा के लिए मंगलवार को यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक होगी। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
1: RM2.

0: बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रेडियो मस्ती सुनते रहे और हमेशा हम यूं ही आपका साथ देते रहेंगे विद दिस ब्यूटीफुल एंड धमाकेदार गाने। सो माय डियर लवली लिसनर्स, जस्ट चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 4:08 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है जी, स्वागत है आप सभी का राइट नाउ ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती इन योर रफ्तार वाइब्स एंड आई एम गोना टेक यू फॉर योर फिल्मी राइड्स विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और साथ में लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में फॉर सम बॉलीवुड की बातें और साथ साथ में स्पोर्ट्स की दुनिया में फॉर सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज एंड ऑफ कोर्स ट्रैफिक अपडेट जरूर देंगे आपको एंड विल बी हैविंग अ लवली गेम एज वेल जहां पे आई हैव अ कैडो टू गिव अवे टू यू। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड हमारे साथ ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती।
1: You're listening to Radio Mastery.

0: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलेक्शन जो बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में, और उम्मीद करते हैं दैट यू हैविंग अ गुड टाइम। अगर काम से निकल चुके हैं, ऑलरेडी हिटिंग द रोड, सो ड्राइव केयरफुली, और अगर अभी लैपटॉप बंद हो रही है और हो सकते हैं बैक पैक हो रहे हैं टू गो बैक होम, सो जस्ट आराम से ही जाना धीरे धीरे हौले हौले। तो दोस्त ऑलरेडी बस में बैठे हुए हैं, हैव अ लवली ट्रिप बैक होम, और बस कंडक्टर साहब को बोल देना रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि लेकर आए हैं कुछ ऐसे गानों का सिलेक्शन जो सीधे जाके दिल पे लगने वाले हैं। तो दोस्त वो लिसनिंग टू अस एट द मोमेंट ऑन आवर इनटू रेडियो, थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। आई नो इट्स ऑलरेडी ट्यूजडे 4th of August 2026, और अगर ज़्यादा थके हुए नहीं हैं तो प्लीज़ बस आराम से बैठ जाना, मुस्कुराइए और खूबसूरत गानों का ये मजा ले लीजिए। फिलहाल के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके लिए द गुड म्यूजिक कंटिन्यूस।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुत्ता

0: शो देखे सकबा अपन महीना के मौस वाली ते सकबा चुकाए आ तोहर अप्लिकेशन कहां पहुंचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा। सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जो सच्चाई में मायना रखेला। जस्सी जानकारी खातिर सिकुम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकुम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
2: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est na saison ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir 9 août, depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Beau Climat, La Flora.
3: RM2
4: Radio Musti

0: listening to a Radio Masti.
1: Raftar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.
3: बिल्कुल जी, दैट्स योर फिल्मी राइट्स। और अगर फिल्मी राइट्स की बात हो रही है तो आपको लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में, लेकिन गाने के लिए नहीं, फॉर अ डायलॉग, जहां पे हम सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा डायलॉग। आपको बस पहचान के हमें बताना है ये कौन सी मूवी से लिया गया है, और अगर आपने सही पहचाना और आपका नंबर निकल आ जाता है लकी ड्रो में, आप बन जाएंगे आज का लकी विनर। यू कैन विन अ लवली गिफ्ट। सो ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या मिल सकता है। सो फिलहाल के लिए जस्ट टू रिमाइंड यू, द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। सो यू can play with MBC and Rajasthan Works Limited abhi ke liye and win exciting prizes, yani ki you can stand the chance, aap jeet sakte hain 4 entry tickets and one food voucher jo hai, one food coupon for the gents Little India Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI and LIC as from 12 of August, 12 August se shuru hoga till the 16th of August 2024, and ye hone wala hai at SBICCR Pai, subah 10 baje khulenge raat ke 9 baje tak, yani ki you can do some लेट नाइट शॉपिंग वहां पे, और वहां पे यू कैन एक्सपीरियंस 5 days ऑफ शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड इवन फैमिली फन फीचरिंग, जहां पे आपको मिल सकता है इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, एंड कानमा शो, एंड वी डू हैव ब्लड डोनेशन कैंप, फूड फेस्टिवल। हाय, सांसे भूल गए बताते बताते, इतने सारे एंटरटेनमेंट हो जाएंगे वहां पर। सो बस मैं आपको याद दिला दूं कि अभी के लिए can win the 4 entry tickets and one food coupon for the gents Little India Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival. Aapko bas is dialogue ko pehchanna hai aur mujhe batana hai ki ye kaun si movie se liya gaya hai.
4: Logon ko maine aisi fight maar ke kamaal hi ho gaya, aur Nisha wo to meri table se ke clean ball ho gayi, aur wo ball ko to maine aisi kick maar ke udta hi gaya. Ye sab ये सब तूने कहना जादू, थैंक यू जादू।
3: बिल्कुल जादू, थैंक यू जादू। ये कौन सी मूवी से लिया गया है ये प्यारा सा लोग, इतना सा आसान सवाल हमने पूछा है। वेल ऑफ कोर्स आपको हमें बताना है द राइट आंसर ऑन 5499-1294 पर 5499-1294 सेंड मी द राइट आंसर राइट नाउ राइट अवे, एंड जी हाँ बनेंगे आज का लकी विनर। ट्राई योर लक, यू नेवर नो, अगर लक ने साथ दे दिया तो आप जीत पाएंगे 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली फॉर द उत्सव India Shopping Carnival happening very soon on from the 12th of August till the 16th at SBICC at Pai. जी हाँ, आप दोबारा सुनना पसंद करेंगे ये डायलॉग, लीजिए।
4: लोगों को मैंने ऐसी फाइट मारी कि कमाल ही हो गया, और लीजा वो तो मेरी टेबल से क्लीन बॉल हो गई, और वो बॉल को तो मैंने ऐसी किक मारी कि उड़ता ही गया। ये सब तूने कहना जादू, थैंक यू जादू।
3: थैंक यू जी शेफो, एडवांस में हम तो कह रहे हैं फॉर सेंडिंग मी द राइट आंसर ऑन 5499-1294 पर फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ।
5: जब दिल का है प्ले

0: to Radio Musty.
1: Le gaspillage d'énergie nous concerne tous. Afin de préserver la stabilité de notre réseau électrique, certaines activités non essentielles alimentées par le réseau sont désormais interdites. Sont notamment concernés l'éclairage extérieur ainsi que décoratif non essentiel à la sécurité publique, l'illumination des façades à des fins esthétiques, les panneaux publicitaires lumineux, les fontaines décoratives ainsi que l'utilisation inefficace des systèmes de climatisation. Les services essentiels tels que les établissements de santé, les services d'urgence, services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les infrastructures de transport maritime et aérien, les sites de production d'énergie, les services de transmission terrestre, radio et télévision et tout autre site ou service désigné par l'Energy Efficiency Management Office ne sont pas concernés par ces mesures. Vous constatez un gaspillage d'énergie? Signalez-le par WhatsApp sur le 57 57 45 34 ou sur le 52 53 01 30. Chaque geste compte. Ensemble, économisons l'énergie pour un avenir meilleur.
0: RM2
2: Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी साथ देने के लिए ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती और हम हैं गिनेशा जी साथ बड़े ही प्यार से दे रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग गाने अगेन बी हियर रात की 7 o'clock तक. वैसे जिंदगी में कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ स्लो चल रहा है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है और हर छोटे स्टेप आपको आपके गोल के और करीब ले जाता है. तो कंपैरिजन को साइड रखिए और अपनी जर्नी को आप एंजॉय कर लीजिए और फिलहाल के लिए बस कीप ऑन एंजॉय करते रहना ये खूबसूरत गाने. और ये है रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइड्स ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती. जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रहा है ना तो बस पैनिक नहीं होना है जी, बस अपने आप को बोलना है कि ऑल इज वेल.
5: यू आर लिसनिंग टू

0: बिल्कुल जी, हम भी तो बैठे बैठे ही बोल रहे हैं कि गिनी नॉट टू वरी, एवरीथिंग इज गुड, सो ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल एंड सब कुछ अच्छा ही चलेगा एंड कीप ऑन मैनिफेस्टिंग सम गुड थिंग्स इन लाइफ. अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा और हमेशा हम कहते हैं ना कि आप अच्छा सोचेंगे यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट गुड वाइब्स और गुड वाइब्स तो वैसे हम आप लोगों को भेज रहे हैं थ्रू दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गाने ऑन आवर एम2 रेडियो मसी. 4:37 हो चुके हैं माय डियर और फिलहाल के लिए हमने पूछा था एक सवाल जहां पे कई सही जवाब हमें मिले. थैंक यू सो मच जी फॉर पार्टिसिपेटिंग टू ऑल आवर डियर लवली लिसनर्स जिन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, सही जवाब भेजे हैं. थैंक यू फॉर ट्राइंग योर लक. लेकिन आज पर द गेम रूल ओनली वन लकी विनर और हमने पूछा था एक सवाल. ये था सवाल कि ये डायलॉग कौन सी मूवी से लिया गया है.
1: लोगों को मैंने ऐसी फाइट मारी कि कमाल ही हो गया और लीजा वो तो मेरी टेबल से किंग बॉल हो गई और वो बॉल को तो मैंने ऐसी किंग मारी कि उड़ता ही गया. ये सब तूने क्या ना जादू. थैंक यू जादू.
0: बिल्कुल जी, हमने पूछा था ये जो अच्छे से डायलॉग हमने आपको सुनाया ये कौन से मूवी से लिया गया है एंड द राइट आंसर इज कोई मिल गया मूवी से लिया गया ये खूबसूरत सा डायलॉग. यू नो मैं बना जादू डा डा डा डा, आई लव दैट मूवी. तो चलिए जी, सारे लोगों ने सही जवाब दिए, थैंक यू सो मच. लेकिन आज का हमारा लकी विनर है ममता हमचन 23 So congratulations to you, Mamta ji. You are aaj ka lucky winner. Aur aap rehte ho Thangba Poultry se. And congratulations to you, my sweetheart. You are winning 4 entry tickets and 1 food coupon for the gents. Little India Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI NLIC. Jo hone wala hai from the 12th of August till the 16th of August at SBICC at pai subah 10 baje se lekar raat ke 9 baje tak. So congratulations to you. Aur baki hamare listeners, thank you so much. Aapne try kiya. Like you can try some other time, you never know, ho sakta luck aapka saath de de. Aur well Mamta ji, somebody will be calling you from the embassy to let you know ki apne ID card lekar kahan pe aana hai, kaise aapko aapka tickets aap collect kar sakte hain. So thank you so much and congratulations to you once again.
2: You're listening to a

0: बिल्कुल जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पक्का नहीं कुछ भी और कच्चा भी नहीं कुछ भी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. एंड आई डू बिलीव इन दैट, आई डू अफर्म दैट, आई डू अक्लेम दैट. डू इट, यू गोना सी, इट्स गोना वर्क फॉर यू माय डियर. इट्स मैजिक, इट्स हैपनिंग राइट नाउ ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आवर इनटू
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट.
4: Sports News.
5: Radio Musti in the mix.
0: वेल गाइस, टाइम बेटा चला जा रहा है, अच्छे 4:45 हो चुके हैं. इट्स टाइम फॉर योर लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज वेव. हमारे स्पोर्ट्स गुरु यानी कि अरविंद जी, गुड आफ्टरनून टू यू.
6: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, यूएफए चैंपियंस लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के मैच आज खेले जाएंगे. इनमें अगागत आर्मेनिया का मुकाबला सेलिए से है, म्यालबी टीम खेलेगी स्लोवान के खिलाफ, बिरक्षेवा रेड स्टार, लेवस्की कायरत, डिनामो जाग्रेब जाल्गिरिस, ओलंपियाकोस एनईसी, स्पार्टा प्राग लियों और यूनियन एसजे बोडो ग्लिम्ट के खिलाफ खेलेगा. और यूईएफए यूरोपा लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में दो मैच लाने इबेरिया शामरॉक इग्नासिया, यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में ओडा का मुकाबला डिनामो से होगा. आज यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग भी खेले जाएंगे और क्लब फ्रेंडलीज भी निर्धारित हैं. एक क्लब फ्रेंडली भी जारी है, बायर्न म्यूनिख जेजू टीम को हरा रहा है 2-1 से. अन्य मैच अल नासर अल्मीरिया, न्यूपोर्ट रोमा, बोर्नमुथ का मुकाबला जेनोवा से होगा. अस्टन विला भी खेलेगा आज बीजीपीयू टीम के खिलाफ नॉर्विच कैम्ब्रिज यूनाइटेड. अन्य मैचों में लेगानेस रायन काफी मैच खेले जा रहे हैं आज, फ्रेंडली मैच सीजन की तैयारी के लिए. और कल भी कंपटीशन जारी है, यूईएफए चैंपियंस लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के दो मैच, फिर यूईएफए यूरोपा लीग क्वालिफाइंग का एक मैच और यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के दो मैच खेले जाएंगे आज और कल. कुछ अन्य खबरें फुटबॉल से ही. फीफा का जो प्राइवेट मनी प्लान था उसे स्क्रैप करना ही था, ऐसा आर्सेन वेंगे ने कहा. इस प्रकार हर प्रकार की आवाजें उठ रही हैं इस डिसीजन के खिलाफ. इन्फांटिनो को अभी बहुत समय नहीं लगेगा, उसको लगता है जाना होगा. इधर ट्रांसफर न्यूज में, आर्सेनल सीरियसली गुमारेज को साइन करने के बारे में सोच रहा है. डायरेक्ट टॉक विद न्यूकासल यूनाइटेड, कप्तान है न्यूकासल यूनाइटेड का, इसीलिए सस्ते में उसको जाने नहीं देंगे. और न्यूकासल यूनाइटेड में अभी मैनेजर गया है तो वो प्रीमियर लीग चैंपियन को ज्वाइन करना चाहता है. होगा डील या नहीं आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि वो जाना चाहता है. फिर ट्रांसफर न्यूज में, कोवेंट्री ने ब्राइटन के गोलकीपर रूफोफ को साइन किया है लोन पर. और कुछ खिलाड़ियों के बारे में सोचा जा रहा है, अभी एक दो दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा. इंग्लैंड के बाहर भी ट्रांसफर हो रहे हैं. कोमो टीम 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी के डिफेंडर थ्रेबो चालोबा को साइन करने जा रहा है. कोमो की टीम जो आने वाले दिनों में कुछ फ्रेंडली मैच खेलेगी, जिसमें लिवरपूल के खिलाफ भी एक मैच होने वाला है. और फाइनली हीरोज वेलकम हमारे उन एथलीटों के लिए जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया, आज वापस आए और प्लेजांस में उनका शानदार स्वागत किया गया. स्कॉटलैंड में शानदार परफॉर्मेंस रहे, 4 मेडल, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल. आपको बता दें कि रेमी फिगे कल वापस आ रहा है, कल भी शानदार स्वागत किया जाएगा, तो हम भी होंगे स्वागत करने के लिए. अभी के लिए आप म्यूजिक एंजॉय कीजिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. टेक केयर, बाय बाय.
0: थैंक यू सो मच अरविंद जी.
3: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट.
2: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.

0: ट्रैफिक अपडेट।
1: बिल्कुल जी, लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन आर एम टू रेडियो मसीह। 4:53 हो चुके हैं, तो चलिए आई एम जस्ट चेकिंग ऑन ट्रैफिक वॉच और आई कैन सी आटाकोडा के जो राउंड अबाउट है वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि अभी ऑफिस आवर्स जो है ख़त्म हो चुके हैं। सो अगर आप पोर्टरी से यानी कि कैपिटल से निकल के नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या साउथ की तरफ, हाँ यानी कि गजवी एंड फिनिक्स की तरफ, दोनों साइड आई कैन सी लंबी कतार है गाड़ियों की। सो ड्राइव स्लोली जी, मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग। और अगर देखूं लाप्लास दाम वहां पर भी गाड़ियों की भीड़ है। एंड चलिए अगर कैजन पुलिस स्टेशन के सामने हम देखें तो ज़्यादा कुछ ट्रैफिक नहीं, इट्स अ मूविंग ट्रैफिक। और वेल लेट्स चेक इट आउट, अगर प्लान लुजान का जो रोड आप कर रहे हो टू गो टू द नॉर्थ तो इट्स अ वेरी स्मूथ रनिंग राइट नाउ एंड बिल्कुल जाम नहीं है। और अगर प्लान लुजान का जो मोटो वे है आप साउथ की तरफ यानी कि रेजू की तरफ आ रहे हैं, सो आई कैन सी लॉट ऑफ cars are moving around but still it's moving slowly and Chelich Olmuka Road it's going on smoothly and well let's check it out for the Terre Rouge ko jo flyover hai wahan pe smooth running traffic chal rahi hai. I don't know, thodi der baad shayad it can be a little bit jam kyunki abhi to log offices chhod ke kaam ke sthan chhod ke ghar ki taraf ja rahe hai. And well chaliye ji let's see at Lagao Juno mein bhi wahan pe bhi bahut sara bheer hai and Queen Street pe bhi gaadiyon ki qatar lambi hai but slowly hai. It's moving on slowly here. चल रेजू की तरफ लेके चलेंगे, so I can see here लंबी लाइन है but still it's moving slowly here. And Eben Motorway पर भी यही है, it's the same thing. तो चलिए Rosalyn 41, just like every afternoon हमेशा की तरह आपको तो पता है it's office hours, peak time है तो काफी jam हो रही है, so अपना extra time लेके चलिएगा जरूर. And जो Saint Jean वाली road है गाड़ियां तो चल रही है धीरे धीरे हौले हौले, फिनिक्स भी एंड हाईलैंड्स मोटरवे पे भी हम यही चेक कर सकते हैं. एंड टू ऑल वेडन का जो रोड है अगर आप उस तरफ जा रहे हो सो आई कैन जस्ट लेट यू नो स्मूथ रनिंग अभी भी गाड़ियां चल रही हैं. तो चलिए जी, बाकी अगर आपके पास कोई या लेटेस्ट अपडेट्स हैं ट्रैफिक को लेकर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे 5499-1294 पर यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस और कॉल मी राइट नाउ राइट अवे. एंड टू ऑल ड्राइवर्स, ड्राइव केयरफुली, मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग, डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग एंड एज वेल यस सीट बेल्ट लगा के चलाना एंड आराम से.
2: You're listening to Radio Masti

मसीह वाले आप कर दो हमें सलाम क्योंकि हम आ गए हैं ऑन और रेडियो मसीह आपका साथ देने के लिए इट्स मेकिंग निशान दुमाएगा अगर अभी है रात के 7 बजे तक जस्ट लाइक एवरी आफ्टरनून 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इन योर रफ्तार वाइब्स एंड ऑफ कोर्स हम आपको लेके जाते हैं बड़े प्यार से आपके फिल्मी राइट्स पर 5:11 मिनट हो चुके हैं सो वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू नमस्कार जी और किनिशा का प्रणाम केम टू आई रियली विश दैट एवरीवन इज फीलिंग गुड एंड एनर्जेटिक हम तो होते ही है मुझे पता है सब मुझे बोले कि कहां से लेकर आते हैं ऐसे एनर्जी एक्चुअली आप लोगों का प्यार खींच कर लेकर आते हैं आपके ब्लेसिंग्स आपके प्रेयर्स एंड ऑफ कोर्स रेडियो मसीह का जो वाइब्स है ना कुछ ऐसा ही है सो आई जस्ट वांट यू ऑल टू एंजॉय द गुड म्यूजिक एंड वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो आज है ट्यूसडे 4th ऑफ अगस्त ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज हेलो जी मैजिकल बर्थडे टू यू ऑन आवर टू रेडियो मसीह एंड आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द एंटायर शो आपके नाम सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड 54991294 5 499 12 94 5 94 5 meilleur dedication right now right away.

जितने भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो हम तो कहेंगे ड्राइव केयरफुली माय डियर एंड लवली पीपल आउट देयर. ऑफ कोर्स आई गॉट यू द बेस्ट सिलेक्शन, द लवली म्यूजिक फॉर यू टू दिस आफ्टरनून, सो दैट आई कैन मेक यू रियली स्माइल एंड फील द गुड वाइब्स. बिल्कुल जी, लाइफ में ट्रैफिक सिर्फ रोड्स पर नहीं होते हैं, कभी कभी ड्रीम्स के रास्ते में भी होते हैं. तो इसीलिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि पेशेंस के साथ चलते जाना है, वही अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं. और इसलिए रुकना नहीं है, बस चलते रहना है. एंड ऑलवेज जस्ट बी पॉजिटिव इन लाइफ, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव जीए, तभी तो आपके साथ पॉजिटिव हो जाएगा. बिल्कुल द वीक वी आर सेंडिंग यू सम पॉजिटिव वाइब्स. और फिलहाल के लिए आई गॉट यू द नेक्स्ट वन, जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर अवनी और वाइफ मनीषा के लिए. दैट्स कमिंग फ्रॉम उनके हस्बैंड रोशन की तरफ से. ललित अजीत एन जी, कैसे हो आप? अगला गाना आपके सारे स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल पोर्टविस में जो है, अभी ये लगता है आप उनको मिस कर रहे हो, छुट्टियाँ जो चल रही है. सो यू आर मिसिंग दैम एंड आई लव दैम सो सो मच, सो दैट्स गुड. और जितने भी फिलहाल बच्चे हैं स्कूल की छुट्टियाँ मना रहे हैं, ये अगला गाना आपके नाम.

0: You're listening to Radio Masti.
1: Raftaar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2. Fashion Tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर, और हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यो फैशन टिप्स। ऐसे बरसाती मौसम बहुत हैं कल से, तो बारिश के मौसम रोमांटिक तो होता ही है, लेकिन फैशन का भी अपना एक चैलेंज लेकर आता है। तो चलिए कुछ क्विक रेनी सीजन स्टाइल टिप्स फॉर यू जेंट्स एंड लेडीज। लेडीज के लिए हैवी फैब्रिक्स की जगह कॉटन ब्लेंड्स या क्विक ड्राई जो आउटफिट्स होते हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। डार्क शेड्स और ब्राइट कलर्स बारिश के सीजन में स्टाइलिश भी लगते हैं, और जो दाग लग जाते हैं, स्टेन्स लग जाते हैं, वो भी कम दिखते हैं। वैसे लॉन्ग फ्लैटेड बॉटम्स की जगह अगर एंकल लेंथ का जो पैंट है या कैप्रिस जो है, ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे बारिश के मौसम में। और जेंटलमैन के लिए लाइट वेट शर्ट्स, पोलो टी शर्ट्स या क्विक ड्राई या जो ट्राउजर्स हैं बेस्ट चॉइस होते हैं ऐसे के मौसम में। डेनिम जो है, जीन्स जो होते हैं, अगर भीग जाए तो हैवी हो जाते हैं, इसलिए रेनी डेज में लाइटर फैब्रिक्स ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट, वाटरप्रूफ जो सैंडल्स होते हैं, रबर सोल जो शूज होते हैं, या रेनी फ्रेंडली जो फुटवेयर होते हैं आप पहन लीजिए। स्लिपरी रोड्स पर स्टाइल के साथ सेफ्टी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, और साथ साथ में एक कम्पैक्ट अम्ब्रेला या स्टाइलिश जो रेन कोट है अपने बैग में ज़रूर कैरी कर लीजिए। और हाँ, अपने फेवरेट लेदर बैग और स्वेट शूज को बारिश से थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, ठीक है। सो फैशन का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता है, यू शुड फील कम्फर्टेबल, और कॉन्फिडेंट फील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बारिश के मौसम में स्टे स्टाइलिश, स्टे ड्राई एंड एंजॉय एवरी ड्रॉप। सो मैं हूँ गिनिशा और आप सुन रही है रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती, जहाँ हर दिन मल्टी हैं और मिलती हैं आपको पॉजिटिव वाइब्स और मस्त लाइफ हैक्स और यो फैशन टिप्स।
2: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

You're listening to your number one radio station. जी हाँ, that's RMT Radio. में से और फिलहाल के लिए 5:52 हो चुके हैं गिनी शाम दमाइक. अभी थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे 6 बजे के समाचारों की ओर, और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूस. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच जी.

0: लवली सॉन्ग स्पेशली फॉर यू इन योर रफ्तार वाइब्स। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। मैं हूँ गिनिशा, जो साथ दे रही हूँ अगर अभी रात के 7 बजे तक। लेकिन फिलहाल के लिए हम बढ़ेंगे 6 बजे की समाचारों की ओर। एंड जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 PM।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
3: Radio Musti.
4: North, South,
3: 103.5.
4: East, West,
3: 96.4.
4: Center,
3: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
6: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: मंगलवार 4 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कोई भी कानून से परे नहीं है और इस मामले में किसी तरह का कवर अप नहीं होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में ये बात कही। वे पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेरोनिका लुगोविन के पति गुलशन गोविन से जुड़े कथित ड्रग तस्करी मामले पर विपक्ष नेता जूली जोंगो के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। मॉरिशस में वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। वेटलैंड्स बिल राष्ट्रीय सभा में पहली बार पेश किया गया। इसका मकसद इन प्राकृतिक क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी आज स्वदेश लौट गए। देश के नाम आई मेडल हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच एक बार फिर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत संघर्ष समाप्त करने का आखिरी मौका है। वहीं ईरान ने अमरीका के साथ किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता से एक बार फिर इनकार किया है। और उधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का कहर अभी भी जारी है। आसाम में बाढ़ और बारिश से हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। इस बीच भारत मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। कोई भी कानून से परे नहीं है और इस मामले में किसी तरह का कवर अप नहीं होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में ये बात कही। ये वे पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेरोनिका लुगोविन के पति गुलशन गोविन से जुड़े कथित ड्रग तस्करी मामले पर विपक्ष नेता जो लिजोंगा के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। सिंचा मुत्यू की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
8: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 26 जुलाई को रियूनियन टापू से प्राप्त उस सूचना के बाद की घटनाओं का क्रम बताया जिसमें 155 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किए जाने की जानकारी दी गई थी। इस खेप की कीमत 233 मिलियन रुपए बताई गई है। इसके बाद गोविंद परिवार के घर की तलाशी का वारंट जारी किया गया। पूर्व जूनियर मंत्री वेरोनिका लुगोविन का एक वाहन भी जब्त किया गया। वहीं उनके पति गुलशन गोविन को गिरफ्तार कर अस्थायी रूप से आरोपित किया गया।
9: On the 1st of August 2026, in the presence of Mr. YJ and ATSU officers,
8: 1 अगस्त 2026 को आत्सू और FSL के अफसरों ने संदिग्ध की उपस्थिति में गाड़ी की जांच की जिसमें गांजे के पत्ते और बीज पाए गए। उसी दिन उस पर अस्थायी आरोप लगाए गए और उसे वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया। उसे पुलिस हिरासत में रखा गया। ब्लैक रिवर की अदालत में उसे फिर से पेश किया जाएगा। 3 अगस्त 2026 को ब्लैक रिवर की जिला अदालत में उसके खिलाफ डेंजरस ड्रग्स एक्ट के तहत ड्रग तस्करी करके मॉरिशस

0: They did the work, and I said in my answer, nobody is going to be spared. Nobody is above the law.
1: खबरों को आगे बढ़ाती हैं। जेलों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में पीएमक्यूटी के दौरान ऐलान किया कि मार्च 2027 तक जेल प्रशासन को एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी मदद से बिना अनुमति उड़ने वाले ड्रोन्स का पता लगाया जा सकेगा और उन्हें रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट मॉनिटोरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट और टैक्स व्यवस्था से जुड़े कई सवालों के भी जवाब दिए। मीगान परापनाइक एंड करुणा लालू।
2: बजट 2025-2026 में VAT रजिस्ट्रेशन की सीमा 6 मिलियन रुपए से घटाकर 3 मिलियन रुपए कर दी गई। सांसद बिचुक के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नई पंजीकृत संस्थाओं से प्राप्त आय का उल्लेख किया।
0: For the period 1st of October 2025 to 29th of July 2026, the total VAT revenue collected from newly VAT registered entities amounts to 655 million rupees. The number of new VAT registration is 8,764 and the number of VAT deregistrations is 84.
2: सांसद सिब्बर ने किराए पर निवेश के लिए आवास ऋण यानी बाय टू लेट मोर्टगेज मौकेट के विकास पर प्रश्न किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस में पहले ही आवास ऋण और गृह वित्त पोषण का एक सुव्यवस्थित बाजार मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक बैंक ऑफ मॉरिशस को इस संबंध में नियामक ढांचे में बदलाव के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
0: That the banking sector has not approached the bank with regard to the lending based on the equity of existing residential properties and the income generating potential of investments. In the event of such a proposal, the bank will study all the aspects of these types of lending arrangements before determining the appropriate regulatory framework, if any.
2: सांसद जोआना बेरांजे के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि उनके दफ्तर के अधीन शीघ्र ही एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन, निगरानी और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है।
0: कंसल्टेशंस आर ऑलरेडी अंडरवे फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल विद अ व्यू टू एंश्योरिंग दैट द यूनिट will be manned by a proficient lead team with robust engineering background and proven track record in project management.
3: Si nous dire si cette unité aura un pouvoir décisionnel ou uniquement consultatif?
0: No decisional power, because he will be able to tell us where the bottlenecks is, where the delay or where the cost of a run or, and he will look at that.
2: जेलों में जब्त किए गए मोबाइल फोनों के संबंध में सांसद अरविंद अग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2026 तक कुल 579 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इनमें से 41 मोबाइल कैदियों के पास से बरामद हुए, जबकि 41 मामलों को जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया। एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा चुका और 35 मामले पर जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेल प्रशासन ने मोबाइल फोन की तस्करी रोकने के लिए पहले ही कई सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी लगाए जाएंगे।
0: The upgrading of the mobile phone jamming system at the Melrose prison will be implemented shortly. The Mauritius Prison Service is also implementing anti-pelting netting in correctional facilities to prevent the introduction of contraband and enhance the safety and security of prison institutions. The Mauritius Prison Service will also procure a new anti-drone system by March of next year to detect and counter unauthorized drone activity, thereby further reinforcing the security of prison premises. Whether he will review urgently whenever a mobile phone is seized, an inquiry be initiated into the owner of that SIM card, the registered owner. I can tell the honourable member I will certainly look into the matter and I've lost the police to look into the matter.
2: Junior Mantri ke pad par Sansad Jawal ke ek anya prashna ke uttar mein Pradhan Mantri ne kaha ki ve punah PPS pranali lagu karne par vichar kar rahe hain.
0: With the evolution of the Mauritian society,

0: national realities and priorities are constantly changing, and the role of the elected represent public officials as well as their responsibilities will have to be reviewed. Consideration is being given to reverting to the PPS system, but it's just consideration.
1: विदेशों में संसदीय मिशनों के संबंध में प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रक्रियाओं की जानकारी दी। पन अफ्रीकन पार्लियामेंट का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मॉरिशस के 5 प्रतिनिधियों ने 28 अप्रैल को शपथ ली थी और कहा कि सांसद लकेराम को इस संस्था की मानवाधिकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
2: राष्ट्रसभा में आज क्रियोल मॉरिशिया को लेकर एक सिलेक्ट कमेटी पर चर्चा की गई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये मोशन पेश किया, उनको सुनते हैं।
0: The House will recall that on the 14th of April last, in reply to parliamentary question B319, I referred to a motion that I proposed to bring to the House. Today I'm coming with a motion standing in my name for the setting up of the Select Committee on the introduction of Créole Mauricien in the National Assembly. I therefore beg to leave to present the motion standing in my name, and which reads as follows. This Assembly resolves that a Select Committee of the Assembly, comprising such members as may be appointed by Madam Speaker, be appointed to consider the introduction of Créole Mauricien in the proceedings of the National Assembly and matters ancillary thereto, with the power for that purpose to send for persons, papers, and records, including the report of the steering committee, chaired by you, Madam Speaker, on the proposed introduction of Créole Mauricien in the National Assembly, dated 12th of March 2026, and to appoint such number of specialist advisors thereto to make such recommendations as it deems fit. Madam Speaker, the House will recall that you, Madam Speaker, established a steering committee in March 2025 to examine the legal, procedural, technical, and institutional conditions necessary for the possible introduction of Créole Mauricien in the proceedings of the National Assembly. Following extensive consultations and detailed analysis, the steering committee has submitted its final report on the 12th of March 2026. Together with an implementation roadmap setting out the way forward. The government recognizes that such a reform raises important constitutional and procedural issues, including amendments to the standing orders. Section 49 of the Constitution presently provides that the official language of the Assembly shall be English, whilst members may address the chair in French. Consequently, the proposed introduction of Créole Mauricien must be examined carefully within the constitutional framework and accompanied where necessary by appropriate legislative and procedural amendments. Madam Speaker, the proposed Select Committee will therefore have a broad mandate. It will be able to consider the constitutional, procedural, operational, social, linguistic, and technological implications of the proposed reform. It will also be able to draw upon the findings of the steering committee, consult legal experts, linguists, sociolinguists, researchers from universities, parliamentary officers, international parliamentary institutions, and anyone who can contribute positively to the reform being proposed. Government considers that the appropriate way forward is for Parliament itself to examine this important national reform through a select committee representing members from all sides of the House. The select committee will then submit its recommendations to this assembly. The establishment of this committee will therefore ensure that the proposed introduction of Créole Mauricien is considered in an open, consultative, and multi-stakeholder manner, drawing upon international best practice while respecting the constitutional traditions and institutional independence of the National Assembly. With these words, Madam Speaker, I commend the motion to the House.
2: राष्ट्रसभा में क्रियोल मॉरिशियन को शामिल करने के प्रस्ताव पर आज बहस जारी रही। मंत्री पत्रिक सियावादन ने इसे लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वहीं पोल बेरांजे ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों का चयन सोच समझ कर किया जाना चाहिए और क्रियोल मॉरिशियन देश की राष्ट्रीय भाषा है। मंत्री शकील मोहम्मद ने इसे आज़ादी के बाद की एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि भाषा का धर्म से नहीं बल्कि संस्कृति से संबंध होता है। वहीं सांसद साबावदी ने इसे नागरिकों के करीब एक गणराज्य की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। क्रियोल मॉरिशियन को राष्ट्रीय सभा में शामिल करने के प्रस्ताव पर बोलने वाले अन्य सांसदों ने भी इस पहल का समर्थन किया। उनके अनुसार ये इस भाषा के संरक्षण और प्रोत्साहन के साथ साथ संसद को लोगों के और करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका ये भी कहना था कि सिलेक्ट कमेटी को इस राष्ट्रीय सुधार के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहिए। मॉरिशस में वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। वेटलैंड्स बिल राष्ट्रीय सभा में पहली बार पेश किया गया। इसका मकसद इन प्राकृतिक क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार अन्य संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों के लिए भी नया कानून तैयार कर रही है। डोमेस्टिक अब्यूज एक्ट अब बिना सहमति के बनाए गए यौन संबंधों को घरेलू हिंसा का एक रूप मानता है। वहीं क्रिमिनल कोड में लाए गए बदलाव के बाद अब पति या पत्नी पर वैवाहिक बलात्कार का मामला भी चलाया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में ये कैसे साबित किया जाता है कि वास्तव में वैवाहिक बलात्कार हुआ है? जांचकर्ता और अदालत किन बातों और सबूतों पर ध्यान देते हैं, आइए जानते हैं अंजू रामगुलाम की इस रिपोर्ट में करुणा लालू के विवरण के साथ।
1: वैवाहिक बलात्कार को अब कानून द्वारा अपराध के रूप में मान्यता दे दी गई है। हाल के कानूनी सुधारों के तहत यदि कोई पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।
3: Définir le viol comme la pénétration du vagin de la femme de l'organe féminin par l'organe masculin. Donc là, nous peut éliminer tout ce qu'on appelle objet, etc., etc.
1: Bakil Mokshada Pertub ne kaha, yahan par sabse mahatvapurna baat bina sahmati ke yon sambandh banana hai. Vaivahik balatkar hua hai ya nahi, ye nirdharit karne ke liye janchkarta aur nyayalay kai prakar ke sakshon par vichar karte hain. यदि हिंसा हुई है तो सबूत होने चाहिए, मेडिकल एविडेंस होने चाहिए या गवाह होने चाहिए जिनसे आपने बात की। यदि किसी व्यक्ति ने शुरुआत में यौन संबंध के लिए सहमति दी लेकिन बाद में नहीं कह दिया तो उस क्षण से उसका इनकार मान्य होगा और उसका सम्मान किया जाना चाहिए।
3: Si madame l'a dit non au milieu de l'acte, mais arrêtez papa.
1: यदि कोई चोट लगने या प्रतिशोध के डर से शारीरिक रूप से विरोध नहीं करता तो सिर्फ विरोध न करने का अर्थ ये नहीं कि उसने सहमति दी हो। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, फैमिली सपोर्ट यूनिट जा सकते हैं अथवा पुलिस की फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट भी जा सकते हैं और प्राप्त साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को अदालत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
3: Et aussi un rapport psychologique demain quand vous allez du Gavin testify dans la cour.
1: एक अन्य महत्वपूर्ण बात वैवाहिक बलात्कार से संबंधित वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत किसी पुरुष को अपनी पत्नी के विरुद्ध इस अपराध में शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं। इस बीच एक पत्नी, लिविन साथी, जीवन साथी या प्रेमिका अपने पति या साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है यदि उसे लगता है कि उसके साथ उसकी इच्छा और सहमति के बिना यौन संबंध बनाया गया है। वैवाहिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर अधिकतम 40 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
2: मॉरिशस में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बनाने की दिशा की की भर्ती को बेहतर बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने मेक्सा और आगिमा के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य है विदेशी कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना, भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना और देश में कामगारों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना।
4: जून 2026 में मॉरिशस के सदस्य बनने के बाद से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने देश में प्रवासन शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें प्रवासन नीतियों के निर्माण में सहयोग, डायस्पोरा की भागीदारी को बढ़ावा देना और अन्य कई पहल शामिल हैं। मॉरिशस के साथ सहयोग के ये 20 वर्ष IOM की 75वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाते हैं। मॉरिशस और सेशेल्स के लिए IOM की प्रमुख आलिया हिर्जी कहती हैं, हम प्रवृत्तियों को समझ सके हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, विदेश में डायस्पोरा की क्या स्थिति है और देश के विकास में किस तरह योगदान दे सकता है। हम प्रणाली मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो वीजा या परमिट से संबंधित हो। हम सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर। इस अवसर पर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक भी मॉरिशस पहुंचे हैं। फ्रांस सेलेस्टन कहते हैं, मॉरिशस को प्रवासियों की जरूरत है, लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, बजाय कि लोग कभी भी और किसी भी तरीके से यहां आए। इस प्रक्रिया से सरकार फैसला ले सकती है कि कब कितने लोग आ सकते हैं और वो भी स्थानीय लोगों की रक्षा करते हुए। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रवासन के क्षेत्र में मॉरिशस के सामने कई चुनौतियां होंगी। मॉरिशस उन देशों में शामिल हैं जिन्हें विदेशी कामगारों की आवश्यकता है। हम कानूनी रूप से आने वाले उन प्रवासियों की ओर से समस्याओं का सामना करते हैं जो अपने ठहराव को बढ़ा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दफ्तर प्रधानमंत्री दफ्तर के साथ काम कर रहा है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।
5: Pour capable adresser le problème de ban immigration qui nous gagnait.
6: Mauritius was at the time in 2012 one of the pilot countries to really make these linkages.
4: संगठन का ये भी मानना है कि प्रवासन के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन टिकाऊ विकास में योगदान दे सकता है, साथ ही मानव गरिमा को पूरा सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी आज स्वदेश लौट आए। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में मॉरिशस के लिए पहला पदक जीतने वाली नोएमी अल्फोंस और बॉक्सिंग में कांस्य पदक का विजेता मर्विन क्लेयर का परिवार, खेल प्रेमियों और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। उनके इस शानदार प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है। उर्दू स्पीकिंग यूनियन ने साल भर आयोजित की गई अलग अलग प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में बेहतरीन भूमिका देने वाले छात्रों को सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह वाकवा के सियाश कुंस्तोते थिएटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर उनकी मेहनत की सराहना की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का कहर अभी भी जारी है। आसाम में बाढ़ और बारिश से हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है, जबकि लगभग 2,00,000 लोग अब भी राहत शिविरों और अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं। इस बीच भारत मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरला, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज बारिश, जल भराव और बाढ़ का बना हुआ है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। इस पर तथा दुनिया भर की अन्य खबरों के बारे में ये रिपोर्ट पेश है।
7: एथेंस के पश्चिम में एक हवाई अभियान के दौरान दो दमकल हेलीकॉप्टरों की आपस में टक्कर हो जाने से दो चालकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना ने आपातकालीन कर्मियों के सामने आने वाले बढ़ते जोखिमों को उजागर कर दिया है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में आग फैल रही है। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। रविवार को रूस में कम से कम 9 और यूक्रेन में 5 लोग मारे गए, क्योंकि कीव और मॉस्को ने एक दूसरे पर लंबी दूरी के हमले तेज कर दिए थे। फरवरी में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए जाने के बाद से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिका के नेतृत्व वाली वार्ता प्रभावी रूप से ठप पड़ी हुई है। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 250 लोगों को ले जा रही एक इंडोनेशियाई नौका में समुद्र में आग लगने के बाद 5 लोग मृत पाए गए हैं और 41 लोग लापता हैं। ये स्पष्ट नहीं था कि नौका में आग कैसे लगी। रविवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की स्वात घाटी में एक उग्रवादी विरोधी रैली को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती बम धमाके में नागरिकों और पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम 14 लोग मारे गए और 2 दर्जन से अधिक अन्य घायल हो गए। हाल के दिनों में इसराइल की चपेट में लेने वाली लू के रविवार अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद थी।

0: इससे असाधारण रूप से उच्च तापमान और अत्यधिक गर्मी की स्थिति पैदा हो गई। बुधवार तक उल्लेखनीय रूप से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है।
1: बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर गीता सौरान के साथ।
2: मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं। पूर्व से आने

बादलों का असर कल से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज रात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिन के दौरान बादल घिराएंगे। पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24 और साहिली इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:37 पर सूरज निकलेगा।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरी समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी लुडोविक हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शुभ समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

Shuk Samacha Sunye, Canal Batus Saint-Croix-Main, Canal Batus Saint-Croix-Main, Satatar Sal, ki 77 years old, ki Shri Satyadev Boyrou, jinhe Dev ke naam se log zyada jante the, ki mrityu ho gayi hai, unki arthi kal 12:30 baje, unke ghar Saint-Croix se uthakar antim sanskar ke liye Sipai Boyle wali dipat ki shamshan bhoomi li jayegi, cremation tomorrow at 12:30 noon. Railway Road, L'Espérance Trébuchet Main, Railway Road, L'Espérance Trébuchet Main, 36 Sal Ki, 36 Years Old Ki, Shrimati Pratima Ram Kilawan. Shrimati Pratima Ram Kilawan, Paidasham Rajkumar, aur jinhen Preeti ke naam se bhi log zyada jante the ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal 12 baje, unki maa Vanita Gokhul ke ghar L'Espérance Trébuchet se uthakar antim sanskar ke liye Piton ki shamshan bhoomi le jaayi jayegi, cremation tomorrow at noon. Petit Paquet Road, Montagne Blanche Main, Petit Paquet Road, Montagne Blanche में 70 साल के 70 years old के श्रीदयानंद कतोना जिन्हें अनिल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थ कल दिन के 2 बजे उनके बेटे आशीव कतोना के घर मोंटाई ब्लॉंच से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं के शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 2 पीएम Rue Maurice Mayberg में साल के 58 years old के श्री देवेन पायन जिन्हें जैसेन के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थ कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती गंधरावती पायन के घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग के शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 पीएम शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है

0: news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
0: RM2.
2: Oh, welcome, Aji, apna hi garage hai. ट्रक्का वाला गीत है जी।

0: पेट्रोल ते पवाए नी। कोई गल नी, साडी गड्डी ते गुडवेल नाल चलदी है।
1: वेलकम बैक इन द थर्ड आवर ऑफ योर अफ्तार वाइब्स। जी हाँ दोस्तों, 6:37 हो चुके हैं। गिनेश ऑन द माइक साथ देने के लिए 7 बजे तक। तब तक के लिए आप आराम से बैठ जाइए, बस अच्छे अच्छे म्यूजिक को सुन लीजिए, और अगर किचन में हो तो कुक आश यू, एंड इफ यू आर स्टिल ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली।

0: और फ्रेंड्स 7:14 दिल ने दिल से तुम्हें पुकारा और दिल से दिल तक का जो कनेक्शन है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बस बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने आप बहुत कुछ समझ जाते हो। और वैसे क्या समझना क्या समझाना, प्यार का कोई लॉजिक नहीं होता है, प्यार में सिर्फ मैजिक ही मैजिक होता है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं ना कि जहाँ पर हर फील्ड में दिमाग जीत ही जाता है उधर दिमाग मात खा जाता है और वो है प्यार के मैदान में। तो चलिए उम्मीद करते हैं प्यार के इस मैदान में हमेशा जीत आपकी ही हो और होगी प्यार की जीत, इतना तो हमें विश्वास है ही। वेल, आप सभी का हम वार्म वेलकम कर रहे हैं एक बार फिर से ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज दिव्या के साथ टिल 9 PM। थैंक यू सो मच इतने प्यार से हमारा साथ देने के लिए। और बिना आपसे कुछ रिक्वेस्ट किए शो से पहले ही इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं, वी रियली फील ग्रेटफुल। एंड ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए ही हम एक से बढ़कर एक गाने चुन चुन कर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नजराने के तौर पर। सो छोटा सा ये गिफ्ट आप प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही प्यार से सिर्फ गाने ही नहीं लेकर आए हैं, हर एक गाने में हमारा बेमतहा बेशुमार प्यार भी छुपा होता है। और वैसे कहते हैं ना कि अगर आपको तकलीफ होती है अपने प्यार का इजहार इकरार करने के लिए तो आपको हमेशा गुड म्यूज़िक और अच्छे संगीत का की मदद लेनी चाहिए और हम यही करने आए हैं। अगर हमारे गीतों को सुनने के बाद किसी की याद आ रही हो या फिर आपके मन में फीलिंग्स उभर कर सामने आ रहे हैं और आपको किसी को कुछ कहना है तो बेशक आप बेझिझक होकर कह सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं तो चलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपके इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए योर मैजिकल नंबर विच इज़ 5499-1294। इसमें आपको बस अपने मैसेजेस ड्रॉप इन करना है और हम आपका आपके ये प्यारे प्यारे पैगामों को बहुत ही प्यार से आपके अपनों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सो चलिए आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा ऑन 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती। RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: Paris vous plus grand festival shopping, Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point à lieu dans SBI Sissipai tous les jours, à partir du 12 août jusqu'à 16 août, de 10h à 9h. Point à shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, du 12 au 16 août à SBI Sissipai, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
1: RM2
2: Radio Musti.

दिल ने जिसे अपना कहा और दिल है कि मानता नहीं कि कुछ शायद ऐसे अपने भी होते हैं जो अपने से ज़्यादा अपने हो जाते हैं, लेकिन हमेशा हम कहते हैं ना कि खून से रिश्ते से बढ़कर हमेशा दिल का रिश्ता ही होता है। और इसको आप थोड़ा सा बढ़ावा देंगे और आप देखेंगे कि प्यार आपको अपनी मंजिल की ओर पहुँचा कर ही रहता है। चलिए यहाँ पर बहुत ही प्यार से आपने हमें मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू सो मच। नमस्ते दिव्या, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने कहा थैंक यू फॉर तुम क्या जानो, यू प्लेड यस्टरडे फ्रॉम द मूवी आशिक। यस आई डू रिमेंबर, लवली सॉन्ग्स एज यूजुअल। रिक्वेस्टिंग फॉर द सॉन्ग चाहता कितना तुमको दिल फ्रॉम द मूवी शापित। आई गेस ये लास्ट टाइम हमने चला लिया था, लेकिन चलिए हम कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार फिर से चलाने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, प्रणाम और नमस्कार दिव्या जी, रोज़ की तरह आपका

प्रोग्राम हम सब सुन रहे हैं. दैट्स रियली नाइस ऑफ यू. दिल से शुक्रिया आपको. ओपन यूनिवर्सिटी से सभी दोस्तों के नाम विकी, किशन, अश्विन, विराज, नीलेश, नायको सन की तरफ से एक गीत की फरमाइश और आपके दो पैसेंजर्स की बात है. आप नॉर्मली अपने तीन पैसेंजर्स के लिए मैसेजेस भेजते हैं, आज तीन से दो हो गए. कोई बात नहीं, लगता है आज एक पैसेंजर मिसिंग है. तो दो पैसेंजर्स के लिए, रेशमा धनिष्ठा के लिए और एडमिशन सेक्शन के लिए और स्टूडेंट अफेयर्स

0: बस कूल म्यूजिक ही चलाने की कोशिश कर रही हैं चिल 9 PM। क्या है ना कि दिन भर लोग थके हारे घर वापस आते हैं और शोर शराबा उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ये गाना हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं फॉर अ फ्राइडे इवनिंग, तो हम ट्राई करेंगे फ्राइडे इवनिंग को इसको चलाने के लिए। एंड चलिए साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। ऑलरेडी 7:30 PM अगर आप इस वक्त अपना डिनर ले रहे हैं फैमिली के साथ तो मोबाइल को एक तरफ रखिए और थोड़ा सा कम्युनिकेशन, क्योंकि कहते हैं कि रिश्ते को थोड़ा आगे और बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन इज़ द की। और अगर आप रोज़ रोज़ प्यार में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि प्यार आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, हाय बस यही दो लाइन प्यार करने वालों को सुनना है, अगर पॉसिबल हुआ तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज, आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनको बताइए कि आप कितना उनके बिना बेचैन हो रहे हैं और आपका दिल कितना

0: बेकरार हो रहा है. और ट्रस्ट मी, प्यार में ये सारी बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि दिन भर और रात भर ये जहन में उतर जाता है. और आप किसी को स्पेशल फील कराने में मेहनत करते हैं ना, तो ये मेहनत आगे चलकर ज़रूर रंग लाती हैं, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो दूसरी साइड से वो भी मेहनत करेंगे और आपको भी एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे. सो प्यार में रेसिप्रोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और प्यार को हमेशा आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको कभी डिवाइड नहीं करना है और सब्स्ट्रैक्ट नहीं करना है. चलिए यहाँ पर आपके कुछ खूबसूरत मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं. हाय दिव्या जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच अनीता जी साथ देने के लिए, सभी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, सभी रेडियो मस्ती टीम के लिए अगला गाना. एंड आपको बों कुहाज अनीता जी, आपको भी बों कुहाज. थैंक यू सो मच, फ्लिक ऑन फ्लैग से कनेक्टेड हैं. हेलो दी, प्लीज़ प्ले द सॉन्ग बातें ये कभी ना फ्रॉम खामोशियाँ, स्पेशली फॉर हबीब रवि. ड्राइविंग राइट नाउ फ्रॉम करिश, करिश साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. वी हैव डी जे दविसन फ्रॉम लालमाची, 3 मिनट का आपने ऑडियो मैसेज भेजा है, इसको सुनना थोड़ा मुश्किल है, बट थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाल कर हमें याद किया है. तो चलिए, अगर आप भी उस पार से हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे आप मॉरिशस में हैं, सात समंदर पार हैं, मे बी इस वक्त आप तैयार हो रहे होंगे काम पर जाने के लिए, मे बी वहाँ पर दिन है और यहाँ पर रात है, ज़रूर बताइएगा कि वहाँ का माहौल कैसा है. एंड जब भी आपके मैसेजेस आते हैं अब्रॉड से, आपके पिक्चर्स भी आप हमें फॉरवर्ड करते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें मौका मिल जाता है कि अब्रॉड का नज़ारा देखने के लिए. एंड इसके लिए थैंक यू सो मच दिल से, आपको बस शुक्रिया कि इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं और साथ देते रहिएगा टिल 9 PM. दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती. कोई शिकवा ना करेंगे, ना आजमाएंगे, तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे. हम तुम्हारी वफा की दुनिया में

0: वेल फ्रेंड्स, रात्रि के 8:06 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपके इतने प्यार भरे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि हम स्टूडियो में अकेले बैठे हैं, क्योंकि साथ में गुड म्यूज़िक है और आपका साथ भी है। थैंक यू सो मच, उस पार से आप लोग हमें याद कर करके मैसेजेस भेजते रहे जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर किसने कहा है, नमस्ते, हेलो जी, गुड इवनिंग, आपका पति आपसे हमेशा कहता है कि अगर रेडियो मस्ती ना होता तो तेरा क्या होता। सुया बिहार जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। आप हैं कुंगुमा से, थैंक यू फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शंस। एंड आप कहती है, हेलो दिव्या जी, नमस्कार टू यू एंड ऑल योर टीम, रीटा एंड फैमिली फ्रॉम मिलानो। रीटा जी, साथ देने के लिए थैंक यू। एंड आप अब्रोड से साथ रही है, वहाँ का क्या हाल है, क्लाइमेट कैसा है और क्या चल रहा है आपके साइड से, ये तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। टू ऑल दोज जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, यू कैन डेफिनेटली कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शो जहाँ पर हमें मौका मिलता है कुछ प्यार भरे गाने आपको सुनाने के लिए, और साथ में प्यार की बातें और साथ में आपके जज्बात हम तक जरूर पहुँचाएं ऑन द मैजिकल नंबर विच इज 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

ये कितना प्यारा समा है, ये कितना प्यारा खूबसूरत माहौल है, जहाँ पर बस प्यार की बातें करते करते ये वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता, और हमें पता भी नहीं चलना है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा तो 9 बज जाएंगे और बस आपको छोड़ने का मन नहीं करता है, एंड ऐसे ही गाने चलाते रहने का मन होता है, और बस जब हमें पता चलता है कि आप हमारी गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, आप थोड़े हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत ही खुशी होती है। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, और डोंट फॉरगेट, आपकी खुशी में ही हमारी

0: खुशी है, इसलिए इस खुशी को कभी किसी की नज़र ना लगे और हम यही कोशिश करते हैं कि इस खुशी को और भी दुगनी हम कर पाए रोज़ रोज़। इसलिए तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और प्यार हो जाए और आपका दिल थोड़ा सा और धड़के। चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस एक बार फिर से। हाय नमस्ते, आई एम जान फ्रॉम काहोलिन, डेडिकेटिंग अ रोमांटिक सॉन्ग टू माय लव जानू, उनका नाम है मोनू, जो अभी वैन ड्राइव कर रही हैं, और उनके लिए ज़रूर हम अगला गाना डेडिकेट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मोनू हमारा साथ देने के लिए। मे बी आप इस वक्त ड्राइव कर रहे होंगे, और अगर आपने अपना नाम सुना वाइल ड्राइविंग, एक छोटी सी हंसी या फिर एक वाइड एंड ब्रॉड स्माइल तो ऑफ कोर्स आ ही गया होगा आपके चेहरे पर। चलिए, आपके दिल को किसने चुराया ही होगा, और जिसने चुराया है वो तो हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से चुराया, कैसे चुराया और क्या हुआ आपकी प्यार प्रेम कहानी में। और कहते हैं ना कि हर किसी की कहानी और हर किसी की प्रेम कहानी अपने तरीके से बहुत ही अलग होता है, और दे बिकम योर फेवरेट ऑफ ऑल टाइम। तो ज़रूर कभी भी आपको वक्त मिले ना तो हमें बताइएगा कि आपकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और कहाँ तक पहुँचे। एंड चलिए यहाँ पर कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे थोड़ी देर में। सो कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
4: Radio Musti.

0: अगर आप प्यार को जाहिर करने की सोच रहे हैं तो आप इतना मत सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे तो ये अच्छा पल आपके सामने से गुजर कर चला ही जाएगा। इसीलिए डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट, जस्ट टेक द मोमेंट एंड मेक इट राइट। हमेशा आप देखेंगे कि अगर आप ज़्यादा इंतज़ार करते हैं तो इंतज़ार करते करते आपको बदले में इंतज़ार ही मिलता है, लेकिन अगर आप इंतज़ार के साथ साथ थोड़ा एक्ट भी करेंगे, रिएक्ट भी करेंगे, तो ऑफकोर्स आप कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे तो बात बनेगी। चलिए यहाँ पर आप कहती हैं, नमस्ते दिव्या जी, प्लीज़ अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए। मोताई ब्लॉश से कनेक्टेड है हमारे साथ, आपको दिल से शुक्रिया। एंड साथ में आशा जी, आप डेडिकेट करना चाहती हैं अगला गाना खासतौर से पतिदेव के लिए, रमेश और आपकी दो प्यारी बेटियाँ हैं, वी हैव शानी और साथ में सुमिला के लिए। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमें सुन रहे हैं और सुनते सुनते आपने सोचा कि भाई चलो एक मैसेज भेज ही लेते हैं। तो लेट मी टेल यू कि आपका मैसेज सिर्फ मैसेज ही नहीं होता है हमारे लिए, इट्स अ सिंबल ऑफ लव, क्योंकि किसी को याद करना अच्छी बात होती है और याद करते करते उनकी याद में एक मैसेज भेजना और उनको ये एहसास दिलाना कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है, दिस इज़ रियली वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड ट्रस्ट मी, जब आपके एक एक मैसेज यहाँ पर हम तक पहुँच जाते हैं तो हम उतना ही स्पेशल खुद को फील करते हैं। 8:40, इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है। जुड़ी रहिए हमारे साथ, बस कुछ ही मिनट का साथ है हमारे और आपके दरमियाँ, तो जितना भी बचा कुचा मोमेंट बचा है उसको हम एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: छोड़े जा रहे हैं आपको इस खूबसूरत गीत के साथ 8:55 होने को है. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए सुनील जी आप हैं कनेक्टेड हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम त्रियोले. एंड नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू सभी रघुबीर फैमिली के लिए आपके दो बेटियों के नाम स्पेशली. और जो आप हमें एक एक करके मैसेज भेजते रहते हैं अपने रूटीन के बारे में बताते रहते हैं, आई एम वेरी श्योर कि ये सारा कुछ आप अपनी प्यारी से शालिनी को भी बताती होगी और उसको कितना अच्छा लगता होगा. सो थैंक यू सो मच सुनील जी हमारा साथ देने के लिए. नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू एंड फॉर योर टू डॉटर्स, आपकी वाइफ के लिए एंड ऑल रघुबीर फैमिली ऑफ थ्रियोले.

नमस्कार और स्वागत आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स आरएम 2 पर। और काम जहां पर चल रहा है भाई, उसी के साथ साथ थोड़ा सा आराम लेना जरूरी है। अब इस रात को एंटरटेनमेंट का लेवल भी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ना, पूरे दिन का काम और अभी वक्त मिला कि कर लें थोड़ा सा आराम, तो हम है ना साथ में आरएम 2 पर। प्लेलिस्ट बिल्कुल सेट, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड के इस प्रोग्राम में लेट नाइट ग्रूव्स। तो अगले 3 घंटे के लिए म्यूजिक, मस्ती और साथ में कुछ अनलिमिटेड फन चलते रहेंगे। बस फ्रीक्वेंसी को सेट करके मूड को सेट करने के लिए तैयार हो जाइए।

0: मेरी मस्ती सुनते रहो।
1: दोस्तों कभी होता है कि किसी सिचुएशन में आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया, लेकिन अगर वक्त मिले या फिर उसको फिर से इनैक्ट करने का मौका मिले तो आप कुछ और कहेंगे नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप इससे पहले रिएक्ट करें, थोड़ा सोच लें, थोड़ा समझ लें और ये भी सोचें कि क्या यही सही तरीका है किसी को कुछ कहने का, या फिर अगर कोई ये चीज़ आपको कहता तो आपको कैसा लगता। बस आप वहीं पर आपको सलूशन मिल जाएगा और आपका चेहरा भी यही सोचकर खिल जाएगा। म्यूजिक कंटिन्यूज RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: दोस्तों, बॉलीवुड ने हमें एक बात तो सिखा दी, चाहे सिचुएशन कितनी भी सीरियस हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते ही कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो बस अगर आपकी लाइफ में एक परफेक्ट बॉलीवुड डायलॉग होता तो कौन सा होता? फिल्मी बनो, ड्रामेटिक बनो, लेकिन आंसर दिल में रखो, क्योंकि ऐसे ही मिजाज ठीक होता है और साथ में थोड़ा सा मुस्कुराने का समय मिलता है।

अच्छा, काफी लोग होते हैं जो कि वक्त निकाल कर जो भी प्लान है उसको अंजाम जरूर देते हैं। अगर दोस्तों के साथ कुछ प्लानिंग कर ली और ऑफिस में थोड़ा लेट भी हो गए, लेकिन फिर भी होता है कि तुम चलो मैं ज्वाइन जरूर करूंगा। चलिए ये भी अच्छी बात है, जितना वक्त मिले ना उसमें चीज़ों को स्पेशल बनाना ज़रूरी है। चाहे बाहर जाकर कुछ ब्रिंग इन शेयर, या फिर ऐसे ही मिल बैठकर सनसेट को देखना, या फिर ऐसी थोड़ी सी गपशप लगाना, ये चीज़ें ना अपनी बैटरी को रिचार्ज कर देती है। RM2 Radio Musti.

अच्छा, हमें से कितने सारे लोग होंगे जो कि गानों के साथ गाते हैं, गुनगुनाते हैं या फिर बाथरूम सिंगर्स हैं। बस ऑडियंस अलग अलग होते हैं ना इसी सिचुएशन में। कोई बाहर से कहता है अरे नहा लो, थोड़ा साबुन लगा लो, यहाँ तो आप सुर से सुर लगा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन सच बताइए, कोई गाने होते हैं ना जो आप बस जैसे ही फ्री टाइम मिलता है उनको गुनगुनाने लगते हैं, तो बस ये और कुछ नहीं, म्यूजिक थेरेपी है। इसको हमेशा ना ऑन मोड पर छोड़ के रखिए। RM2 रेडियो मस्ती।

अच्छा बॉलीवुड में हम देखते हैं कि किस तरह हीरो हीरोइन के बीच में प्यार मोहब्बत होती है, कभी कभी सिचुएशनल होती है और कभी एक नजर में ही प्यार हो जाता है। कभी आपको ऐसा हुआ है लेकिन बोलने का साहस या फिर उस इंसान को देखा उसके बाद कभी दिखी नहीं तो क्या करें, आजकल तो सोशल मीडिया के चलते नहीं। हाँ लेकिन ये सच है कि हम अपने प्यार को अंजाम जरूर देना चाहते हैं लेकिन ये जो फीलिंग है ना उसको एंजॉय करना चाहिए। क्या दिल ने प्यार करना सीख लिया।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: अच्छा, कभी आपने कोशिश की है कि घर में जिससे भी बात कर रहे हैं किसी बॉलीवुड के गाने का सहारा लेकर, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, एक सीधा मैसेज कि अब शादी करने का प्लान ऑन हो चुका है। हाँ, वैसे जिंदगी में सेटल होना हर कोई चाहता है, लेकिन थोड़ा सा फिल्मी रहना भी जरूरी है। नहीं, इट एड्स अ स्पाइस टू लाइफ। और फिर देखिए साहब, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप एक लेवल से दूसरे। नहीं, प्लान बना लिया क्या या मम्मी को बता दिया?

0: नास्ती।
1: भाई आज रात का गोल्डन रूल की स्माइल फ्री है, म्यूजिक अनलिमिटेड है और डांस करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर चाहे स्लो डांस ही क्यों ना हो, तो अगर घर पर हैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए और अगर ड्राइव पर निकले तो सेफली एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ है तो एक सेल्फी तो बनती है बस।
2: RM2 Radio Musti.

0: अच्छा बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि जो हीरो हीरोइन है वो मतलब फिट, बिल्कुल फिट बॉडी की कमाल, और साथ साथ में सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, फाइटर हैं, मतलब सब कुछ कमाल। वाह, ऐसा असली में होता नहीं। ऐसा नहीं कि आपने बस गिटार लिया, बजाना शुरू किया और फिर ड्रम्स भी बजने लगे, कहीं से आवाज़ भी मिक्स हो गई, कोरस भी आ गया, लड़कियाँ भी नाचने लगी। लेकिन इमेजिनेशन के लिए ठीक है ना। हाँ, वैसे अगर आप कुछ परस्यू करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त में, हाँ, बात के लिए कुछ मत छोड़ें। अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं या फिर गाना सीखना चाहते हैं, तो कहने का मतलब यही कि क्यों ना शुरुआत की जाए, बात के लिए क्यों टाला जाए।
1: RM2 Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो आपको एक मोटिवेशन देता है, या फिर आपको लगता है कि इससे एक्साइटमेंट पैदा होती है, फिर चाहे वो सुबह उठकर आपका रूटीन वॉक करने का, या फिर वापस घर पर आकर ब्रेकफास्ट करने का, या फिर अपने चुने हुए कपड़े वो कॉम्बिनेशन पहनकर ऑफिस जाने का, कलीग्स को हेलो हाय कहने का, जो भी हो। अरे साहब, उसके अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़रूर रखें, क्योंकि इसके बिना ज़िंदगी बड़ी सी ब्लैक एंड वाइट सी हो जाती है, लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। इसलिए रंग भरना तो आपका काम है, म्यूज़िक के ज़रिए हमें देना इस कार्यक्रम को अंजाम है।

0: चलिए साहब, ऐसी बातों बातों में कार्यक्रम अपने एंड तक जरूर पहुंच गया। कुछ खट्टी मीठी बातें हुई, बड़ा मजा आया, और साथ साथ में गानों के साथ जुड़कर वक्त बिताने में भी एक अलग ही आनंद था। वैसे जिंदगी के अंदर ये जो आनंद है ना, यूं ही लेते जाइए और टेंशन को बाहर का रास्ता दिखाते जाइए। हेल्थ इज वेल्थ। बस ये सोचिए कि एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर ये टेंशन एंग्जाइटी को पालकर फायदा किसी का नहीं होगा। आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा और आप सोल्यूशन ढूंढते रह जाएंगे। इसे जरूरी है जिंदगी जियो जी भर के और अपना पार्टनर बना लो, म्यूजिकल पार्टनर RM2 को। जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिए, नमस्कार।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: संजना,
3: आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
4: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां।